0: आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णय में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोटी डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह 2 दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत के अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया

0: card game played in partnerships. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत।

प्रियश्रोता, अभी आप सुन रहे थे मौन पर श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुनेंगे साजोलोंग श्रोताओं का कार्यक्रम।

प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साजोलांग श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुनेंगे रूसो आकाश श्रोताओं का कार्यक्रम।

0: प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रूसो आकाश श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर सोपोल आलोक जीते आरोसोगो सिरग गालो मेंकेनागो मेलेंजिर मेंकेनागो मेंजिनगो मारबम जिरदो IIT दिल्ली के 57 कॉन्वोकेशन मरो रिडागलो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पुलिक जिदूला योना अबागो रिला में लाचिन देश के अलदे कोम रिपोम में पोम न्यातो का अमला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स का दंब मेंगाबला रोगुदूला नरुए

नमस्कार श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम गालो भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आज के सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टूडियो पर मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले एवं तकनीकी अभियंता गोलो कालो। दोस्तों, आज 9 अगस्त 2026 है और आज के इस सुबह आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा विशेष। इससे पहले कि हम सुबह सवेरे की इस कार्यक्रम की शुरुआत करिए, दोस्तों चलिए आपको सुना देते हैं आज का पहला गीत फिल्म रहना है तेरे दिल में से, जिसे गाया है के ने। चलिए दोस्तों सुनते हैं सच कह रहा है दीवाना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं सुबह सवेरे आपकी मॉर्निंग डोज ऑफ एनर्जी पॉजिटिविटी और गुड हेल्थ। उठिए, स्ट्रेस कीजिए और महसूस कीजिए सुबह की ताजी हवा, क्योंकि याद रखिए एक हेल्दी मॉर्निंग बनती है एक पावरफुल डे। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही सिंपल से, योगा। योगा सिर्फ मुश्किल पोजेस का नाम नहीं, योगा है अपने शरीर, सांस और मन के बीच एक कनेक्शन बनाना। सुबह के कुछ मिनट स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन के लिए निकालिए। दिन की शुरुआत कीजिए शांत मन और फोकस्ड माइंड के साथ। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए, क्योंकि कभी कभी सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो अपने मन को शांत रखना जानता है। दोस्तों बहुत हो गया आराम, टाइम है मूव करने का। वॉक कीजिए, रन कीजिए, साइकिल चलाइए, स्ट्रेच कीजिए, डांस कीजिए या अपना फेवरेट स्पोर्ट्स खेलिए। हेल्दी रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप महंगा जिम ज्वाइन करें, बस जरूरी है कि मूवमेंट को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। तो चलिए उठिए, कुर्सी से बाहर निकलिए, फोन एक तरफ

रखिए और अपने बॉडी को दीजिए थोड़ा एक्शन, क्योंकि आपका शरीर कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे खराब होने पर रिप्लेस कर दिया जाए। अपने बॉडी का ख्याल रखिए, उसे एक्टिव रखिए, उसे रिस्पेक्ट कीजिए। और हेल्दी रहना सिर्फ एक्सरसाइज करने तक ही सीमित नहीं, आप क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितनी अच्छी नींद लेते हैं और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब आपकी हेल्थ पर असर डालता है। पौष्टिक खाना खाइए, पर्याप्त पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए और अपने लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालिए। अपने शरीर को वार्निंग देने का इंतजार मत कीजिए, आज से ही अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दोस्तों, सुबह सवेरे में आगे हम और बात करेंगे, लेकिन चलिए उस बीच आपको सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत। हम सुनेंगे तोबा तुम्हारे ये इशारे।

दोस्तों, सुबह सवेरे में अब एक ऐसी बात जो हम सबके लिए जरूरी है, ड्रग्स शायद कुछ पल के लिए एस्केप का एहसास दे, लेकिन यह आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपकी पढ़ाई, आपका करियर और आपका फ्यूचर छीन सकते हैं। किसी टेम्पररी एस्केप के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर मत लगाइए। अगर कोई सब्सटेंस यूज की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसे जज मत कीजिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसकी बात सुनिए, उसका साथ दीजिए और प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए एनकरेज कीजिए। और अगर कभी कोई आप पर ड्रग्स लेने का प्रेशर डाले तो याद रखिए, रियल फ्रेंड्स आपको ड्रग्स की तरफ नहीं धकेलते, असली हिम्मत है ना कह पाना। हमारे साथ बोलिए, नो टू ड्रग्स, यस टू हेल्थ, यस टू लाइफ, यस टू योर फ्यूचर। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि मैं अपने बॉडी को एक्टिव रखूंगा, मैं अपने मन का ख्याल रखूंगा, मैं हेल्दी हैबिट्स अपनाऊंगा और मैं अपने फ्यूचर को ड्रग्स से दूर रखूंगा। ये था सुबह सवेरे दोस्तों, जहाँ हर सुबह एक नई शुरुआत है। गहरी सांस लीजिए, पॉजिटिव सोचिए, एक्टिव रहिए, हेल्दी रहिए और ड्रग्स से दूर रहिए। मैं हूँ आपकी आरजे मांच और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहाँ हम बात करते हैं हमेशा दिल से दिल तक। दोस्तों चलिए अब एक और गीत सुनते हैं। गीत का नाम है तूने जो ना कहा।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, सुबह सवेरे के आज के कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अब आप सुनेंगे अपतानी श्रोताओं का कार्यक्रम अपतानी भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां बात होती है दिल से दिल तक। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, हम फिर मिलेंगे हमारा कार्यक्रम सदाबहार में।
2: प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम, गालो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुनेंगे अपतनी श्रोताओं का कार्यक्रम।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम आपातानी भाषा में समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और वक्त हो चला है मॉर्निंग इंफरटेनमेंट प्रोग्राम का, जहां हम आपको देते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और न्यूज फ्रॉम द लोकल डेलीज। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों की शुरुआत करें दोस्तों, चलिए आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत दोस्तों। फिल्म मैं हूं ना से हम सुनेंगे सोनू निगम की आवाज में, तुमसे मिलके दिल का।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0-litre dual-jet, dual-vivity engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
1: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: दोस्तों सुबह की ताजा हवा के साथ लेकर आए हैं खास कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट का. चलिए जानते हैं अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ इम्पोर्टेंट लोकल खबरें शॉर्ट सिंपल और सीधे अंदाज में. 80-20 रिक्रूटमेंट रेशियो को लेकर AFTF का डेडलाइन. ईटानगर से बड़ी खबर, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट यानी AFTF ने स्टेट गवर्नमेंट को 15 अगस्त तक का डेडलाइन दिया है. AFTF की मांग है कि 80-20 रिक्रूटमेंट रेशियो को स्क्रैप किया जाए और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPSC और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB के रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में ST और परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी PRC को मैंडेटरी बनाया जाए. सैटरडे को AFTF ने ईटानगर में आकाशदीप से IG पार्क तक एक बड़े मार्च का आयोजन किया, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनल मास रेफरेंडम रैली कहा. रैली में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया. IG पार्क में रैली को एड्रेस करते हुए AFTF चेयरमैन तादाक नालो ने कहा कि ये मुद्दा अरुणाचल के यूथ के राइट्स और फ्यूचर से जुड़ा हुआ है. उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से अपील की कि 15 अगस्त से

पहले कैबिनेट डिसीशन लेकर इशू को रिजॉल्व किया जाए। AFTF ने ये भी कहा है कि अगर डेडलाइन तक डिमांड्स पर एक्शन नहीं हुआ तो एजिटेशन का अगला फेज स्टेट कैपिटल से बाहर भी जा सकता है। अरुणाचल में फूड एंड माउथ डिजीज का आउटब्रेक। अब बात करते हैं लाइफ स्टॉक और फार्मर्स से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट हेल्थ अलर्ट की। एनिमल हस्बेंड्री, वेटरिनरी और डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अरुणाचल प्रदेश में फूड एंड माउथ डिजीज FMD के आउटब्रेक की कंफर्मेशन की है। ये एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है जो मिथुन कैटल, बफेलो, पिग्स, शीप और गोट्स जैसे क्लोवन हूव्ड एनिमल्स को अफेक्ट करती है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज में दिबांग वैली, ईस्ट कामेंग, पाकिकेसांग और पपुम्पारे शामिल है। दिबांग वैली में 200 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने की बात सामने आई है और कुछ एरियाज में मिथुन मोर्टालिटी भी रिपोर्ट हुई है। डिपार्टमेंट के मुताबिक ईस्ट कामेंग, पाकिकेसांग और पपुम्पारे में सिचुएशन फील्ड इंटरवेंशन और सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बाद फिलहाल कंट्रोल में है। डिपार्टमेंट के मुताबिक FMD के कॉमन सिम्टम्स में बुखार, मुंह और पैरों पर छाले, एक्सेसिव सलाइवेशन, लेमनेस और प्रोडक्टिविटी में कमी शामिल है। एक्सपर्ट्स और डिपार्टमेंट्स की तरफ से ये क्लियर मैसेज है कि टाइमली वैक्सीनेशन प्रिवेंशन का सबसे इम्पोर्टेंट मेजर है। स्टेट में मई से जून के बीच 7th राउंड वैक्सीनेशन में 89% कवरेज अचीव हुआ था। प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक जिन एनिमल्स को वैक्सीनेशन मिला था उनमें डिजीज रिपोर्ट नहीं हुई है। लाइफ स्टॉक ऑनर्स से अपील है कि अफेक्टेड एनिमल्स को आइसोलेट कीजिए, वेटरनरी टीम के साथ कोऑपरेट कीजिए और किसी भी अनयूजुअल सिम्टम की इन्फॉर्मेशन तुरंत नियरेस्ट वेटरनरी स्टाफ को दे दीजिए। TCL रीजन में बॉर्डर फेंसिंग तेज करने का निर्देश। अब सिक्योरिटी से जुड़ी खबर। गवर्नर KT परनायक ने सैटरडे को DGP डॉ SD सिंह जमवाल के साथ स्टेट की लो एंड ऑर्डर सिचुएशन का रिव्यू किया। मीटिंग के दौरान गवर्नर ने तिराप, लोंगडिंग, चांगलांग, TCL रीजन में बॉर्डर फेंसिंग कंस्ट्रक्शंस को एक्सपेडाइट करने का डायरेक्शन दिया। इसका ऑब्जेक्टिव है एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग जैसे इंसिडेंट्स को चेक करना और सिक्योरिटी एनवायरमेंट को स्ट्रेंथन करना। मीटिंग में क्राइम प्रिवेंशन, पब्लिक सेफ्टी, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और स्टेट पुलिस की रेडीनेस पर भी डिस्कशन हुआ। गवर्नर ने पुलिस पर्सनल को लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट जैसे नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहने पर भी जोर दिया। उन्होंने क्विक रिएक्शन टीम्स, बेटर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और रेगुलर मॉक एक्सरसाइजेस की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। टूरिज्म सेक्टर और प्रोफेशनल बनाने पर जोर। और अब टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी अपडेट। अरुणाचल में टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को मोर इनोवेटिव, सस्टेनेबल और फाइनेंशियली रेजिलियंट टूरिज्म सेक्टर डेवलप करने पर फोकस करने की बात कही गई। डिस्कशन में टूरिज्म मार्केटिंग, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटल प्रेजेंस स्ट्रांग करना, टूरिज्म फेयर्स में पार्टिसिपेशन, GST कंप्लायंस और प्रोफेशनल इंडस्ट्री नेटवर्किंग जैसे टॉपिक्स पर शामिल रहे। गवर्नमेंट स्कीम्स और सपोर्ट मैकेनिज्म्स का इफेक्टिव यूज करके डेस्टिनेशन मार्केटिंग, टूरिज्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव करने पर भी डिस्कशन हुआ। इस इंटरेक्शन में टूरिज्म स्टूडेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, हॉस्पिटैलिटी एंटरप्रेन्योर्स और गाइड्स ने भी पार्टिसिपेट किया। इससे स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री एक्सपोजर और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल से लर्निंग और मेंटरशिप का अपॉर्चुनिटी मिला। प्रोग्राम ने एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया कि गवर्नमेंट टूरिज्म इंडस्ट्री, लोकल कम्युनिटीज और यंग टूरिज्म प्रोफेशनल्स के बीच स्ट्रांग कोलैबोरेशन ही अरुणाचल को एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने में मदद कर सकता है। तो दैट इज योर मॉर्निंग अपडेट।
दोस्तों ये थी अरुणाचल

प्रदेश से जुड़ी आज की इम्पोर्टेंट लोकल अपडेट्स, रिक्रूटमेंट पॉलिसी पर डेडलाइंस, लाइवस्टॉक ऑनर्स के लिए एफएमडी अलर्ट, टीसीएल रीजन में सिक्योरिटी मेजर्स और टूरिज्म सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की तैयारी। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज का मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम ओनली ऑन आकाशवाणी ईटानगर। दोस्तों, खबरों से जुड़िए, जानकारी से जुड़े रहिए और अपने सुबह को बनाइए पॉजिटिव, इन्फॉर्म्ड और एनर्जेटिक। मैं हूं आपकी आरजे मांझ। और चलिए दोस्तों, अब मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम की को अंत करते हैं एक और एक प्यारे से गीत से। हम सुनेंगे फिल्म माय नेम इज खान से सजदा। इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम तागिन भाषा में समाचार, जिसके बाद दोस्तों हम फिर मुलाकात करेंगे सदाबहार के कार्यक्रम में। तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम तागिन भाषा में समाचार, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, जहां बात करते हैं हम दिल से दिल तक। चलिए दोस्तों अब समय हो चला है कार्यक्रम सदाबहार का, जहां हम आपको देते हैं वेदर अपडेट्स। सुबह का वक्त है, हवा में ठंडक है, आसमान में बादल है और कहीं कहीं बारिश की बूंदें भी आपकी सुबह को और खूबसूरत बना रही है। आप सुन रहे हैं सदाबहार, जहां बात सिर्फ मौसम की नहीं, बात होती है हमारी हवा की, हमारे जंगल की, हमारी नदियों की और हमारे बदलते क्लाइमेट की। लेकिन इससे पहले कि हम आप बात आगे बढ़ाएं दोस्तों, चलिए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। हम

सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आज के वेदर की। ईटानगर में आज आसमान में बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर थंडरस्टॉर्म और बारिश देखने को मिल सकती है। दिन का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस

के आसपास रह सकता है, जबकि रात में टेम्परेचर करीब 24 डिग्री तक जा सकता है। और अगर आप सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक अम्ब्रेला या रेनकोट साथ रखना स्मार्ट चॉइस हो सकता है। आने वाले कुछ दिनों में भी अरुणाचल के कई हिस्सों में बारिश और थंडरस्टॉर्म के सिलसिला जारी रहने की संभावना है, इसीलिए ड्राइविंग करते वक्त स्पीड का ध्यान रखिए, पहाड़ी रोड्स पर एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए और हैवी रेन के दौरान अननेसेसरी ट्रैवल से बचिए। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि मौसम और क्लाइमेट में फर्क क्या होता है? आज बारिश हुई है, ये है वेदर, लेकिन कई सालों तक टेम्परेचर, रेनफॉल और वेदर पैटर्न्स में जो बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज सिर्फ दुनिया किसी दूर कोने की कहानी नहीं, इसका असर हमारे आसपास भी महसूस किया जा सकता है। कभी बहुत ज्यादा बारिश, कभी अनयूजुअल गर्मी, कभी लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का रिस्क, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि नेचर के साथ हमारा रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश अपने घने फॉरेस्ट्स, पहाड़ों, रिवर्स और रिच बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये फॉरेस्ट सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये हमारे नेचुरल प्रोटेक्शन है। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं, हवा को साफ रखते हैं, मिट्टी को संभालते हैं और पानी के नेचुरल साइकिल में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इसीलिए जब हम एक पेड़ बचाते हैं, हम सिर्फ एक पेड़ नहीं बचाते, हम अपना फ्यूचर बचाते हैं। और अब एक सिंपल सी बात, ग्लोबल वार्मिंग, जब एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती है तो अर्थ की हीट ट्रैपिंग बढ़ सकती है। इसका एक मेजर रीजन है फॉसिल फ्यूल्स का यूज, जैसे कोल, ऑयल और गैस। इसीलिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इफिशियंसी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका छोटा स्टेप नेचर के लिए एक बिग स्टेप है। लाइट और फैन बिना जरूरत के ऑन मत रखिए, प्लास्टिक का अननेसेसरी यूज कम कीजिए, जितना पॉसिबल हो रीयूजेबल बॉटल्स और बैग्स यूज कीजिए, पौधे लगाइए और एग्जिस्टिंग ट्रीज को प्रोटेक्ट कीजिए, पानी बर्बाद मत कीजिए और अपने आसपास सफाई रखिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट या साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज की सुबह एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए सदाबहार की तरफ से, सदाबहार के साथ, कि नेचर को सिर्फ एंजॉय नहीं करेंगे, नेचर को प्रोटेक्ट भी करेंगे। बारिश आए तो उसकी खूबसूरती देखिए, लेकिन बारिश और बदलते वेदर पैटर्न्स हमें जो मैसेज दे रहे हैं उसे समझना भी जरूरी है। याद रखिए, हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी लाइफ, ग्रीन अरुणाचल, क्लीन अरुणाचल, और सबसे इम्पोर्टेंट आज का रिस्पॉन्सिबल डिसीशन है, कल की सेफ दुनिया बनाएगा। ये था सदाबहार का आज का वेदर और एनवायरनमेंट अपडेट। मौसम का हाल जानिए, क्लाइमेट को समझिए और नेचर के साथ कदम मिलाइए। सदाबहार, मौसम की खबर, प्रकृति की फिक्र। दोस्तों, चलिए सदाबहार के इस कार्यक्रम का अब हम अंत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत से। हम सुनेंगे फिल्म पीके से, भगवान है कहा रे तू। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस गीत के तुरंत बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के साथ, जहां आप सुनेंगे समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज, जिसके बाद दोस्तों आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज के लिए। तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। हम फिर मिलेंगे दोस्तों हेलो ईटानगर के कार्यक्रम में।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़

0: करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद

0: मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
1: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है।

0: सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल ना पूछे समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कांवड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Saagnik Roy and Sayantan Kushari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और दोस्तों, वक्त है अब हमारे कार्यक्रम हेलो ईटानगर का। इससे पहले कि हम हेलो ईटानगर के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, चलिए दोस्तों आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में, फिल्म सुल्तान से जग घूमया।

दोस्तों चलिए आज हमारे हेलो ईटानगर के इस कार्यक्रम में बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक चीज के बारे में जिसका नाम है आपका सरनेम क्या कहता है। जरा सोचिए, अब बाजार में जा रहे हैं, एक तरफ सोनी ज्वेलरी बना रहा है, दूसरी तरफ कुमार मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, कहीं लोहार लोहे को गर्म करके उसका आकार बदल रहे हैं और किसी दफ्तर में मुंशी हिसाब किताब लिख रहे हैं। अब सवाल ये है, आज अगर हम इन लोगों के वंशजों से मिले तो क्या उनका काम वही होगा? जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है उनका सरनेम अब भी उनके पुरखों के प्रोफेशन की कहानी सुना रहा हो। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक थोड़ा हटके है और हम बात करेंगे इंडियन सरनेम्स और उनकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री के बारे में, यानी नाम से प्रोफेशन तक का सफर। पुराने समय में हर व्यक्ति के पास आज की तरह फिक्स्ड सरनेम होना जरूरी नहीं था। लोगों को उनके गांव, जगह, परिवार, टाइटल, कम्युनिटी या प्रोफेशन से पहचाना जाता था। जैसे वो लोहे का काम करने वाला है, वो सोने का काम करने वाला है, वो गांव का अकाउंटेंट है, वो टीचर है। धीरे धीरे कुछ जगहों पर ये पहचान और टाइटल्स फैमिली नेम्स या सरनेम्स का रूप लेने लगे और इसीलिए इंडिया में ऑक्यूपेशनल नेम्स सरनेम्स की दुनिया इतनी कलरफुल है। सबसे पहले मिलते हैं कुछ ऐसे सरनेम्स से जो प्रोफेशन से ज्यादा पावर और पोजीशन की कहानी बताते हैं, जैसे कि पटेल, पाटिल, देसाई, रेड्डी, चौधरी, देशमुख, देशपांडे, मेहता, गौड़ा, हेगड़े। इनमें से कई नाम अलग अलग रीजन्स में हिस्टोरिकल टाइटल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से जुड़े हैं, जैसे कि पटेल और पाटिल जैसे टाइटल्स विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड होल्डिंग से एसोसिएटेड है। देसाई का संबंध है देश यानी टेरिटरी या लैंड से जोड़ा जाता है। देशमुख और देशपांडे जैसे नाम हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स से जुड़े हैं और मेहता कुछ कॉन्टेक्स्ट में एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट या टीचर जैसे रोल से इसका संबंध मिलता है। यानी आज सरनेम एक फैमिली आइडेंटिटी है, लेकिन कभी कभी वही नाम एक पुरानी गवर्नमेंट जॉब का डिजिग्नेशन भी हुआ करता था। जब हिसाब किताब बना परिवार की पहचान, पुराने दफ्तर के सीन इमेजिन कीजिए, एक बड़ा सा रजिस्टर, इंक पॉट और एक आदमी दिन भर बैठा है नंबर्स, लैंड रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स लिखने में। ऐसे रोल से जुड़े कई हिस्टोरिकल टाइटल्स बाद में सरनेम के रूप में भी दिखे, जैसे कि मुंशी मतलब क्लर्क या सेक्रेटरी, पोदार मनी और ट्रेजरी से जुड़े हिस्टोरिकल रोल्स, मजूमदार रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स से संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटल, नदकर्णी यानी विलेज अकाउंट से जुड़ा हिस्टोरिकल ऑफिस और पटवारी यानी लैंड रिकॉर्ड्स और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा एक मशहूर डेजिग्नेशन। तो दोस्तों आज हम एक्सेल स्प्रेडशीट खोलते हैं। पुराने जमाने में रजिस्टर खुलता था, टेक्नोलॉजी बदल गया लेकिन हिसाब रखने की जरूरत नहीं बदली। अब चलते हैं बाजार की तरफ, यहाँ मिलते हैं सेठ, शाह, शेट्टी, चेटियार या महाजन। इनमें से कई नेम्स हिस्टोरिकली ट्रेड, कॉमर्स, गिल्ड्स और मनी मैनेजमेंट से कनेक्टेड है। शेट्टी और चेटियार जैसे नेम्स का संबंध हिस्टोरिकल मर्सेंटाइल ट्रेडिशंस और गिल्ड लीडरशिप से जुड़ा

से जोड़ा जाता है। क्षमा कीजिए, महाजन यानी लिटरली ग्रेट पर्सन कई कॉन्टेक्ट्स में मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स और कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड रहता है। और शाह इंडियन नेमिंग ट्रेडिशंस में कई रीजन्स में मर्चेंट या रेस्पेक्टेड बिजनेस पर्सन के टाइटल के रूप में इसका यूज हुआ। यानी इंडियन बाजार के पुराने प्रोफेशनल्स ने भी अपनी एक लिंग्विस्टिक लेगेसी छोड़ी। अब प्रोफेसर्स की दुनिया से प्रोफेशन की दुनिया से निकल कर चलते हैं नॉलेज की दुनिया में, जैसे आचार्य, उपाध्याय, पाठक, शास्त्री, पांडे, वेद्य, जोशी, दीक्षित, झा। इनमें से कई सरनेम्स हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस में टीचर, स्कॉलर, प्रीस्ट, फिजिशियन या एस्ट्रोलॉजर जैसे रोल्स से कनेक्टेड रहे हैं। आचार्य टीचर या स्पिरिचुअल गाइड, उपाध्याय यानी टीचर, पाठक यानी ट्रेडिशनल लर्निंग से जुड़ा नाम, शास्त्री यानी शास्त्र में प्रोफिशिएंसी का संकेत, वेद्य यानी ट्रेडिशनल फिजिशियन या डॉक्टर, और जोशी का हिस्टोरिकल कनेक्शन ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर से मिलता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग थॉट है, आज अगर किसी का सरनेम जोशी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं। सरनेम हिस्ट्री बताता है, करंट जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं। अब उन लोगों की बात जिन्होंने अपने हाथों की कला से समाज को चलाया, जैसे लोहार यानी ट्रेडिशनल एसोसिएशन विद आयरन वर्क, सुथार यानी कार्पेंट्री और वुड वर्किंग, कुमार यानी पोट्री, तांती यानी वीविंग और थ्रेड रिलेटेड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, सुनार या सोनी यानी गोल्ड स्मिथिंग और ज्वेलरी मेकिंग की परंपरा से एसोसिएटेड, धोबी यानी वॉशिंग प्रोफेशन, गदैया यानी लाइफ स्टॉक पर्टिकुलरली शीप रेयरिंग से ट्रेडिशनल एसोसिएशन। सोचिए, जब फैक्ट्री नहीं थी, मास प्रोडक्शन नहीं था, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी, तब एक स्किल्ड आर्टिसन ही था जो आपकी जरूरत पूरी करता था। एक लोहार का हथौड़ा, एक कुम्हार का चक, एक सुतार की औजार, ये सब इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री का हिस्सा है। इंडिया के सरनेम्स की कहानी सिर्फ संस्कृत तक सीमित नहीं, पर्शियन और अरबिक इन्फ्लुएंस ने भी इंडियन नेमिंग ट्रेडिशंस को शेप किया, जैसे दीवान, बख्शी, फदनावीस, सरफ, मुंशी, दलाल, मजुमदार, दरोगा, तहसीलदार, फौजदार। इनमें से कई टर्म्स हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, मिलिट्री या जुडिशियल पोजिशंस को डिस्क्राइब करता है, जैसे दीवान यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू से जुड़ा एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल, बख्शी यानी पे मास्टर खासकर मिलिट्री पे और अकाउंट्स से एसोसिएटेड, फदनावीस यानी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंस से जुड़ा इम्पोर्टेंट ऑफिस, सरफ यानी मनी चेंजर, बैंकर या बुलियन डीलर की ट्रेडिशनल दुनिया से कनेक्शन, और दलाल यानी ब्रोकर यानी बायर और सेलर के बीच कनेक्शन बनाने वाला, पुराने बाजार का मिडलमैन, आज की लैंग्वेज में ब्रोकर। और अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न यानी वाला। इंडिया की कई अर्बन कम्युनिटीज खासकर पारसी नेमिंग ट्रेडिशंस के कॉन्टेक्स्ट में वाला सफिक्स प्रोफेशन या एसोसिएशन को इंडिकेट करता है, जैसे लोखंड वाला यानी आयरन से रिलेटेड, जरी वाला यानी जरी यानी मेटालिक डेकोरेशन डेकोरेटिव थ्रेड से रिलेटेड, लकड़ा वाला यानी एसोसिएटेड विद वुड, पालखी वाला पालखी से रिलेटेड है, बाल्टी वाला बोटल ट्रेड या बोटल रिलेटेड वर्क, और इसी तरह सरनेम स्पेसिफिक ट्रेड्स और ऑक्यूपेशंस डेवलप हुए, यानी सरनेम में ही एक मिनी विजिटिंग कार्ड, नाम बाटली वाला, काम बोटल से कनेक्शन, है ना इंटरेस्टिंग। ये पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंडिया एक क्रॉस रोड्स रहा है, इसीलिए हमारे सरनेम्स में पोर्चुगीज, पर्शियन, अरबिक और इंग्लिश इन्फ्लुएंस भी मिलता है। मिस्त्री यानी पोर्चुगीज में मेस्त्रे यानी मास्टर या स्किल्ड एक्सपर्ट से रिलेटेड माना जाता है।
और ब्रिटिश पीरियड के दौरान

0: जापान अर्बन इंडिया में कई प्रोफेशनल आइडेंटिटीज और सरनेम्स डॉक्यूमेंटेड हुए, इसीलिए आपको मिल सकता है मिस्त्री, कॉन्ट्रैक्टर, पेंटर, बिल्डर, मिलर। नाम सुनते ही प्रोफेशन का अंदाजा लग जाता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है, इंडिया में सरनेम का ओरिजिन सिर्फ प्रोफेशन नहीं था, कई सरनेम्स प्लेस ऑफ ओरिजिन से भी आए। जैसे किसी जगह से माइग्रेट करने वाले लोग उस जगह के नाम से आइडेंटिफाई होने लगे। माथुर यानी मथुरा से कनेक्शन, कनौजिया यानी कनौज से, अरोरा यानी हिस्टोरिकल अरोर रीजन से, आलूवालिया यानी आलू से। इसी तरह के कई सरनेम्स क्लैन, लिनिएज, टाइटल, कम्युनिटी, रिलीजियस ट्रेडिशंस या ज्योग्राफिकल ओरिजिन से भी आए। इसीलिए एक सरनेम को देखकर किसी व्यक्ति का कास्ट, प्रोफेशन या बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली डिसाइड करना सही नहीं है। ये मैं जो बता रही हूँ ये खाली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और अगर आप डे टू डे लाइफ में लोग से मिलते हैं तो इससे आप जरा सा उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का भी अंदाजा लगा सकते हैं। एक ही सरनेम अलग अलग कम्युनिटीज में मिल सकता है और एक ही सरनेम अलग रीजन्स में अलग हिस्ट्री भी हो सकता है, इसीलिए सरनेम एक क्लू है, कंप्लीट बायोग्राफी नहीं। आज का मोदी बिजनेसमैन हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, एथलीट हो सकता है या किसी अलग, बिल्कुल अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड से भी हो सकता है। आज का गांधी भी जरूरी नहीं कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से जुड़ा हो। नाम बढ़ता है, समाज बदलता है, प्रोफेशन बदलता है, लेकिन नाम कभी कभी अपने पीछे एक पुरानी कहानी छोड़ जाता है। तो आज दोस्तों हेलो इटानगर की तरफ से आपके लिए एक चैलेंज, आज घर जाइए और मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी से पूछिए कि हमारे सरनेम की कहानी क्या है, कहाँ से आया, किस प्रोफेशन से जुड़ा था, किसी गांव या शहर का नाम था, कोई टाइटल था या कोई पुरानी फैमिली ट्रेडिशन। हो सकता है आपको अपने ही नाम में 100, 200 या 300 साल पुरानी कहानी मिल जाए। और याद रखिए, सरनेम सिर्फ नाम के आखिर में लगाने वाला एक शब्द नहीं, कभी कभी वो हमारे पुरखों के काम, उनकी जगह, उनकी कला और उनके समाज की एक छोटी सी हिस्टोरिकल फाइल होता है। दोस्तों मैं हूँ आरजे मंच, आप सुन रहे थे हेलो इटानगर का कार्यक्रम। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। ये अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने काकोरी रेल घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि काकोरी रेल घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है। इसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इस साहसी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अदम्य साहस और समर्पण से ब्रिटिश शासन को यह संदेश दिया कि देश के संसाधन उसकी जनता के हैं।

0: सरकार ने चार उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर पुदुचेरी में हैं। श्री शाह गुरमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर बढ़ता दिख रहा है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गिरने और आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा के कई क्षेत्रों में भी तेज वर्षा हो रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव वाले क्षेत्र का असर राज्य में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया के एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान हासिल किया। भारत के अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान शानशी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said, they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both the leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said, this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
2: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: He further urged the students to keep national interests at the center of their decisions. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through the 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. More than 200 Indian embassies, high commissions and consulates will organize a series of events to mark the campaign. Union Home Minister Amit Shah will flag off the Har Ghar Tiranga Yatra at Muruga Theatre Signal in Puducherry today. Mr. Shah, who is on a two-day official visit, arrived in the Union Territory last night. The centre has notified the appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka, with Madras High Court receiving the largest share of new appointees. According to a notification issued by the Ministry of Law and Justice, the appointments include 20 advocates, 10 judicial officers. Of the total, 15 judges have been appointed to the Madras High Court, 8 to Calcutta High Court, 6 to the Karnataka High Court and 1 to the Madhya Pradesh High Court. Jharkhand students protesting against alleged irregularities in JPSC and JSSC recruitment exams will hold another round of talks with the representatives of state government in Ranchi today. The next round of talks between Jharkhand government and representatives of protesting students is scheduled around noon today. In Jammu and Kashmir, the annual Amarnath Yatra will remain suspended on both Pahalgam and Baltal routes from today due to recent rains, repair work of pilgrimage tracks and forecast of adverse weather conditions over the next few days. The decision to temporarily halt the Yatra has been taken, keeping in view the condition of the tracks as well as the weather forecast issued by IMD. And IMD has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh today. The IMD forecast heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Jharkhand, Madhya Pradesh and parts of Northeast India today. The Met Department has issued a warning of heavy to very heavy rainfall in several districts of Uttarakhand over the next 48 hours. Odisha is witnessing another spell of widespread rain with a fresh low pressure system over the Bay of Bengal, triggering heavy to very heavy rainfall in several parts of the state. And India's Agnik Roy and Sayantan Koshari clinched the gold in the under 31 pairs at the 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships in China. In the first elimination round, 34 pairs competed and top 14 advanced to Flight A, including the Indian duo. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और वक्त हो चला है दोस्तों हमारे कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। दोस्तों आज फिल्मी गपशप के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारे से एल्बम को, चांद के पार चलो। दोस्तों इस एल्बम में आप सुन पाएंगे गीत जैसे चांद के पार चलो, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में, जिसके बाद हम सुनेंगे किन्ना सोरा पल जसपिंदर नरूला की आवाज में, दिनचक लड़ गए कल्पना और करसन संगाठिया की आवाज में, फिर सुनेंगे दीवाना पूछ लेगा उदित नारायण की आवाज में। दोस्तों बहुत सारे बातें हो चुकी है, इसीलिए मैं आपको कुछ मोमेंट देना चाहती हूँ बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी इंटरप्शंस के, एक नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले, जहाँ बिल्कुल बस म्यूजिक होगा, बस गीत होंगे और आपका मन। चलिए दोस्तों लेते हैं ये शांत सा वक्त गीतों के संग।

फूल जब मांगते हैं बरसों दुआ, तब बहारों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहां मिलती है।

0: दोस्तों फिल्मी गपशप में आज के लिए बस इतना ही। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। दोस्तों समाचार के इस ब्रेक के बाद हम मिलेंगे, जुड़ेंगे फिर से हमारे खास कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर, तो बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही दोस्तों रेडियो ऑन डिमांड के लिए आप अभी से हमें मैसेज कर सकते हैं आपको आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गेरिमुइडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लिया। उन्होंने पुदुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर मिलने पर बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पुदुचेरी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेन्स और उनकी पत्नी उषा वेन्स को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सरकार ने 4 उच्च न्यायालय में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।

0: शाह ने काकोरी रेल घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि काकोरी रेल घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है, जिसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं ओडिशा के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी ऊपर वाले निम्न दबाव क्षेत्र का असर राज्य में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बैतरणी और सालंदी नदियों के जलस्तर बढ़ने से भद्रक जिले के कई लोगों की चिंता और बढ़ गई है। बड़े स्तर पर फसल नुकसान की भी आशंका बताई जा रही है। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सांगनिक रॉय और सायंतम कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। क्रोएशिया के एम फिरेनेका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जेहान और जेडे वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारत की अश्मिता चलेहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। वहीं फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान चियानशी को 14-21, 21-14, 21-14 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security, and critical minerals. Both the leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through the 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity, and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. More than 200 Indian embassies, high commissions and consulates will organize a series of events to mark the campaign. Union Home Minister Amit Shah will flag off the Har Ghar Tiranga Yatra at Muruga Theatre Signal in Puducherry today. Mr. Shah, who is on a two-day official visit, arrived in the Union Territory last night. Prime Minister Narendra Modi today paid tribute to all those who participated in the Quit India movement. In a social media post, Mr. Modi said their courage will always remain an inspiration for every Indian. The Prime Minister said, inspired by the leadership of Mahatma Gandhi, the clarion call of Quit India infused new energy into India's freedom struggle and reflected the unwavering determination of the people to break free from colonial rule. The centre has notified the appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka, with Madras High Court receiving the largest share of new appointees. According to a notification issued by the Ministry of Law and Justice, the appointments include 20 advocates, 10 judicial officers. Of the total, 15 judges have been appointed to the Madras High Court, 8 to Calcutta High Court, 6 to the Karnataka High Court and 1 to Madhya Pradesh High Court. The appointments were made by the President in consultation with the Chief Justice.

0: नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां बात करते हैं हम दिल से दिल तक। और स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।
0: तो दोस्तों, किस बात का इंतजार है, जल्द ही फोन उठाइए और हमें तुरंत मैसेज कीजिए। नंबर है 9436887808। इस नंबर पर आप अपने मैसेजेस, सॉन्ग रिक्वेस्ट, डेडिकेशंस लिख भेजिए और हम उसे आपके लिए प्ले करेंगे हमारे रेडियो ऑन डिमांड के इस कार्यक्रम में। दोस्तों इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों चलिए लेते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट। और पहला सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें आया है पाकी केसांग की तरफ से। और पाकी केसांग डिस्ट्रिक्ट से रिचो जी लिख रहे हैं कि उन्हें सुनना है फिल्म मेट्रो इन दिनों से कायदे। तो आशा करते हैं रिचो जी कि आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत कायदे से अरिजीत सिंह की आवाज में।

तो दोस्तों ये था सॉन्ग रिक्वेस्ट रिचो जी की तरफ से, जो कि लिख रहे थे पाकी के सांग से। और चलिए अब लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। और अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट आया है हमें सोम तुदू जी की तरफ से, जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट असम से, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म तेरा फितूर। तो चलिए सुनते हैं जीएस फिल्म का ये गीत तेरा फितूर।

0: क्षमा कीजिए दोस्तों, डेस्कटॉप पे कुछ गड़बड़ी आने के कारण मुझे मैसेजेस नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो चुका है। चलिए सुनते हैं लोकीनाथ रोंगहांग जी का सॉन्ग रिक्वेस्ट, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का आंख है भरी भरी, और लिख रहे हैं वो नाहरलगन से, तो काफी नजदीक है। लोकीनाथ जी, आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और आप सुन रहे हैं हमें और आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट। चलिए सुनते हैं आंख है भरी भरी फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से।
1: आंसू पी के भी जो मुस्कुराए वही तो जमाने को जीत पाए।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings, or any other recreational activities in order.

0: around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in riverbeds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन डिमांड का कार्यक्रम, जहां हम वही सारे गीत प्ले करते हैं जो आप रिक्वेस्ट करते हैं। जी हां, आप हमें रेडियो ऑन डिमांड पर अपने मैसेजेस, अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट और अपने डेडिकेशंस लिख भेज सकते हैं, और हम उन सारे रिक्वेस्ट को फॉलो करते हैं हमारे रेडियो ऑन डिमांड के इस कार्यक्रम पर, जो चलता है सुबह के 10:10 से सुबह के ठीक 11 बजे तक। तो दोस्तों अभी भी समय है, अगर आपने आप हिचकिचा रहे हैं या आपने अभी तक फोन उठाकर हमें मैसेज नहीं किया है, तो अभी भी समय है, तुरंत मैसेज कीजिए और आपके मैसेजेस के, आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट को हम जरूर फुलफिल करेंगे। चलिए दोस्तों अब लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा रिक्वेस्ट जो हमें आया है हितेंद्र दास से, जो कि लिखते हैं असम से, और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया है फिल्म, क्षमा कीजिए, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया है माँ तुझे सलाम गीत, जिसे गाया है और निर्देश किया है एआर रहमान ने। उनके एल्बम वंदे मातरम का ये गीत है और वो डेडिकेट करना चाहते हैं, हितेंद्र दास जी डेडिकेट करना चाहते हैं इस बहुत ही दिल छूने वाले गीत को सभी आरजेज और स्टाफ मेंबर्स ऑफ आकाशवाणी को। बहुत बहुत धन्यवाद हितेंद्र दास हमें आपके थॉट्स में याद रखने के लिए, और स्पेशली डेडिकेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड दुर्गेश जी को। तो आशा करते हैं हितेंद्र दास जी और दुर्गेश जी आप दोनों ही सुन रहे हैं हमें, और आपका प्यार हमेशा देते रहिए। बहुत अच्छा लगता है आपसे मैसेज लेने के लिए, आपके डेडिकेटेड सॉन्ग्स प्ले करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और फिलहाल चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग माँ तुझे सलाम।

दोस्तों चलिए रेडियो ऑन डिमांड पर लेते हैं अब अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट आया है हमें रोमेश पात्रो, रूनू पात्रो और लक्की के तरफ से, जो कि लिखते हैं गोलाघाट आसाम से और डेडिकेट करते हैं इस प्यारे से गीत को अपने दोस्तों भाईकोन अमोल, बिमोल, देवशीष, हितेंद्र, जोगेंद्र, सोनाली और अंजलि को। उनका सॉन्ग रिक्वेस्ट है फिल्म जमाने को दिखाना है से होगा तुमसे प्यारा कौन। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेशन और बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ।

रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808।

दोस्तों चलिए अब सुनते हैं एक और सॉन्ग रिक्वेस्ट, जो कि हमें रिक्वेस्ट किया है हमारे डेली लिसनर ने। हमारे डेली लिसनर हर्षित गोस्वामी जी हमारे साथ कई बार जुड़ चुके हैं और जुड़ते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है हर्षित जी, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे हमसे बात करते रहिए, आपके रिक्वेस्ट हमें भेजते रहिए, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट लेने के लिए बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब लेते हैं उनका सॉन्ग रिक्वेस्ट, और वो कह रहे हैं कि हर्षित गोस्वामी जी बखत आसाम से लिखते हैं कि उन्हें सुनना है फिल्म छिछोरे का खैरियत। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म छिछोरे से खैरियत।

दोस्तों चलिए रेडियो ऑन डिमांड पर अब लेते हैं आखिरी सॉन्ग रिक्वेस्ट। हम सुनेंगे फिल्म सावन को आने दो से ये गीत तुझे गीतों में डालूंगा, जिसे गाया है जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा ने। ये सॉन्ग रिक्वेस्ट दोस्तों हमें मिला है नानी तागो जी से, जो कि लिख रहे हैं निर्जुली नाहरलगन अरुणाचल प्रदेश से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट का। तो चलिए सुनते हैं सावन को आने दो फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों रेडियो ऑन डिमांड पर आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के प्यार, आप सभी के मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें दिल खोलकर ऐसा प्यार देते हैं, क्योंकि

0: रेडियो आपके बिना कुछ नहीं है, लिसनर्स ही हमारे इस रेडियो के इस संगम में मेन जो हिस्सा निभाते हैं वो आप श्रोता लिसनर्स ही है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम जितना चाहे बोल ले कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए दोस्तों हम हमेशा आपका प्यार का इंतजार करते हैं, तो धन्यवाद उसके लिए। और साथ ही दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा की अंत में। इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले एवं तकनीकी अभियंता गोलो कालो। साथ ही अपने आवाज के साथ थी मैं आपकी आरजे बिंदुंग निंदो मंच। तो दोस्तों अब दूसरे प्रसारण सभा में आपको एक सुरीले सफर पर ले जाने के लिए हमारे स्टूडियो पर पहुंच चुके हैं अगले आरजे आरजे गीचे कानिक। तो आशा करते हैं कि आप एंजॉय करेंगे आगे का सफर हमारे साथ। बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। तो दोस्तों मेरी तरफ से अब अलविदा कहने का समय है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानून तीन महत्वपूर्ण स्तंभों प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास पर आधारित हैं। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी रेल घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि काकोरी रेल घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है, जिसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में

जिंदगी एक रेडियो की तरह है, कभी आवाज क्लियर होती है, कभी स्टैटिक, लेकिन सही फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो हर पल सुरीला बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना स्थानीय रेडियो केंद्र अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से दूसरे ट्रांसमिशन के साथ। दोस्तों, ये है आपका अपना स्टेशन, आपका साथी, जहां हर दिल की धड़कन को मिलता है एक नया एहसास। तो दोस्तों, आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई हमारी पहली प्रसारण सभा, और उस सभा में आपका साथ निभाया आरजे मंच ने। तो चलिए दोस्तों, अब नया वक्त है, नई आवाज है और नया अंदाज है, और स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी दूसरी प्रसारण सभा में। और इस सभा की मेजबानी कर रही हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो साथी गिची कनिक। दोस्तों, आपको बता दूं, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक दीतांजन तथा तकनीकी अभियंता नंद कुमार।

तो इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमे। आइए दोस्तों, समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर की ओर और इस कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म सनम तेरी कसम से। एंजॉय कीजिए।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल की बात.
1: दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी लहर यहीं पर समाप्त होता है. उम्मीद करती हूं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा. आपको बता दूं आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात. इसी के साथ ही चलिए दोस्तों अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वस्तन मेलेडीज पर आधारित पाश्चात्य संगीत का.
2: Hello everyone and welcome to Akashwani Itanagar. You're listening to Western Melodies and I'm your host Coco. Today's playlist is packed with unforgettable pop hits filled with love, heartbreak, confidence, memories and powerful emotions. From classic favorites to energetic party songs, we got everything for every mood. So relax, turn up the volume and enjoy the music with us. This next song is a true pop classic. As Long As You Love Me by Backstreet Boys talks about unconditional love and accepting someone no matter their past.

0: And with that, we came to the end of today's episode of Western Melodies here on Akashwani Itanagar. I'm your host, Coco. Thank you for spending this beautiful moment with us. I hope today's song brought back memories, emotions, and good energy. Until next time, stay safe, stay happy, and keep listening to good music. Bye-bye.
1: श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज पर आधारित पाश्चात्य संगीत यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद यानी 12 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने

0: कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज आर रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through the 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. इन जम्मू कश्मीर

तो वो हमेशा दिल के करीब रहता है। तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ करते हैं आज के कार्यक्रम का आगाज एक ऐसे गीत से जो मोहब्बत, जुदाई और दर्द के एहसास को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। जी हाँ दोस्तों, साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म तेरे नाम का ये गीत आज भी लिसनर्स के बीच उतना ही पॉपुलर है। और आपको बता दूं, इस गीत को अपनी आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। आइए दोस्तों, बिना किसी देर के सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों, अभी आपने इस गीत को सुना, अलका याग्निक और कुमार सानू के आवाजों में फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे इसे। और दोस्तों, इसी सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हुए अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, वो भी मोहब्बत के रंगों से सजा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा नगमा है। जी दोस्तों, फिल्म हेलो ब्रदर का ये पॉपुलर सॉन्ग तेरी चुनरिया अपनी मस्ती भरी धुन और खूबसूरत लिरिक्स के लिए आज भी याद किया जाता है। और दोस्तों, इस गीत को अपनी आवाज दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, जबकि म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद ने। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं संगीत का ये खूबसूरत सिलसिला और सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म हेलो ब्रदर का ये खूबसूरत गीत तेरे चुनरिया। इसी के साथ अब वक्त हो चला है इस हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के कार्यक्रम को यही विराम देने का। दोस्तों, उम्मीद है आज के इन गीतों ने आपके दिन में थोड़ी सी मिठास और कुछ खूबसूरत यादें जरूर जोड़े होंगे। आइए दोस्तों, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है अगला कार्यक्रम गीतमाला का।

दोस्तों, इसी के साथ अब शुरू हो रहा है हमारा अगला कार्यक्रम गीतमाला, और आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, गीतों का ये सिलसिला लेकर हम आए हैं आपके सामने कुछ ऐसे नगमे जिनमें देशभक्ति, जज्बात, मोहब्बत और जिंदगी के अलग अलग रंग समाये हुए हैं। और आज की इस खूबसूरत सफर में दोस्तों आज के इस खूबसूरत सफर में हम लेकर आए हैं ढेर सारी नगमे। आइए आपको गीतमाला कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों, इसी देशभक्ति के जज्बे को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं एक और ऐसा गीत जो अपने आप में देश के वीर जवानों के लिए एक सलाम है। दोस्तों, फिल्म हकीकत का ये गीत कर चले हम फिदा उन सैनिकों के हौसले, बलिदान और देश के प्रति समर्पण को बयां करता है। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, गीत लिखा है कैफी अजमी ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने। तो आइए दोस्तों, अपने वीर जवानों को याद करते हुए सुनिए एक दिल को छू जाने वाला ये नगमा।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम गीतमाला पर और आप इन गीतों का आनंद ले रहे हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों, हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत आपको सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज में फिल्म दिल जले से।

0: हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री ने आज गोरीमेदु स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो चला है हमारा अगला कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम आपको ले चलेंगे 60s से लेकर 80s के उस दौर में जब हिंदी फिल्मों का संगीत अपनी मधुर धुन, खूबसूरत लिरिक्स और यादगार आवाजों के लिए जाना जाता था। दोस्तों 60s, 70s और 80s का वो दौर जब गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि जज्बातों को बयां करने का एक खूबसूरत जरिया हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और एसपी बालसुब्रमण्यम जैसे महान सिंगर्स की आवाजें आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। तो आइए गुजरते हैं उन्हें सुनहरे दिनों के गलियों से जहां हर धुन आपके साथ एक कहानी लेकर आती है। आइए दोस्तों इसी के साथ इस कार्यक्रम का पहला नगमा आपको सुनवाते हैं एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में।

दोस्तों, अब इसी सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं एक ऐसे गीत के साथ जिसमें मोहब्बत है, अदा है और आंखों की वो खामोश बातें हैं जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। जी दोस्तों, सुन उमराव जान का ये मशहूर गीत इन आंखों की मस्ती के। आशा भोसले की मधुर आवाज में है, इसके बोल लिखे है शायर ने और संगीत दिया है खयाम ने। आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो जिंदा होती हैं भारत के हर जिले में। लेकिन इन कहानियों को दुनिया तक पहुंचाएगा कौन? अब कैमरा आपके हाथ में और मंच पूरे देश का। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, जहां उभरते डिजिटल क्रिएटर्स दिखाएंगे अपने जिले का कल्चर, हेरिटेज, आर्ट, टूरिज्म। शुरुआत 2 states और 4 union territories से। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए का पुरस्कार। प्ले स्टोर या एप स्टोर से वेव्स OTT डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर से साइन इन करें, माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं, जेम्स ऑफ इंडिया प्रोग्राम चुनें, अपनी ओरिजिनल वीडियो और डिटेल्स अपलोड करके सबमिट करें। हर कहानी को मिलेगा एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच। वेव्स OTT पर।

0: अरे कहाँ थे तुम?
1: ओह रेन माय डार्लिंग माय
2: स्वीट। दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म वक्त का ये एक खूबसूरत गीत आशा भोसले की दिलकश आवाज में। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो चला है हमारे हिंदी क्लासिक म्यूजिक के इस खूबसूरत कार्यक्रम को यही विराम देने का। 60s से 80s के इन सुनहरे दौर के गीतों के साथ गुजारा ये सफर यकीनन आपके लिए भी यादों से भरा होगा। दोस्तों कुछ गीत वक्त के साथ पुराने जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी मिठास कभी पुरानी नहीं होती।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अब वक्त है हमारे अगले कार्यक्रम का। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त हो चला है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम का। दोस्तों हिंदी सिनेमा और उसका संगीत दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा है जहां हर कहानी के साथ एक गीत जुड़ जाता है और हर गीत अपने साथ एक एहसास जोड़ जाता है। तो इसी खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक रोमांटिक और मेलोडियस गीत के साथ। आइए दोस्तों फिल्म वांटेड का एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं शान और श्रेया घोषाल की आवाज में।

दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं अब से कुछ ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज। 2:15 पर प्रसारित होगा दोपहर समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: 2026. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, प्रति घर तिरंगा।
3: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत

0: ट्वीट कर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
1: It is indeed a pleasure to launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to this call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the Historic islands on this historic day.
0: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
2: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी टाइमलाइन और ट्रस्ट ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
3: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार

0: और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
1: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल

0: ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दोस्तों, अभी आप बारी बारी से सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, अब वक्त है एक और खूबसूरत संगीत के सफर का, जहां यादें भी होंगी, नॉस्टैल्जिया भी होगा और होंगे वो गाने जो आज भी सुनते ही हमें अपने बचपन और पुराने दिनों की याद दिला देते हैं। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s कार्यक्रम। दोस्तों, 90s का दौर हिंदी फिल्म म्यूजिक के लिए एक खास दौर था। एक तरफ कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति जैसे सिंगर्स की मधुर आवाजें, तो दूसरी तरफ ऐसी धुनें जो आज भी पार्टी, शादियों और रेडियो पर सुनाई देती है। दोस्तों, वो कैसेट्स का जमाना था जब अपना फेवरेट गाना सुनने के लिए रिवाइंड और पास फॉरवर्ड करना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से लौट चलते हैं उन्हें सुनहरे 90s में, उन गीतों के साथ जिनके साथ हमारी न जाने कितनी यादें जुड़ी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए नॉस्टैल्जिया के सफर के लिए, क्योंकि हिट्स ऑफ 90s कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है। दोस्तों इसी के साथ ही इस कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन पाएंगे लता मंगेशकर और एसपी

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों और अब हिट्स ऑफ 90s के इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं एक ऐसे गीत के साथ जो 90s के रोमांटिक म्यूजिक की एक प्यारी सी याद है। जी दोस्तों, फिल्म जीना तेरी गली में का टाइटल सॉन्ग अपने मधुर धुन और रोमांटिक अंदाज के लिए जाना जाता है। इस गाने में वही 90s वाली सिंप्लिसिटी और मोहब्बत का एहसास है जो आज भी सुनने वालों को उस दौर की यादों में ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, 90s की इन खूबसूरत यादों को थोड़ा और ताजा करते हैं और सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में इस गीत को।

श्रोता दोस्तों, अभी आप भारी भारी से सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से प्रसारित न्यूज हेडलाइंस मिसमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और थाई कमती श्रोताओं का कार्यक्रम। इसी के साथ ही दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट का।

दोस्तों, फिल्मी दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है। कभी कोई सॉन्ग कंट्रोवर्सी में आ जाता है, कभी कोई स्टार कमबैक करता है और कभी सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ हेडलाइंस बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के बॉलीवुड अपडेट्स में बात करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की कुछ खास और इंटरेस्टिंग खबरों की। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त गीची कनिक और अब शुरू करते हैं आज का फिल्मी सफर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा की, जो अपने लेटेस्ट सॉन्ग फाइन शिट को लेकर सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म का सामना कर रहे हैं। जी दोस्तों, सॉन्ग रिलीज होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे क्रिंज कहा, वहीं कुछ लोगों ने सॉन्ग के लिरिक्स और मिसोजिनिस टोन पर भी सवाल उठाए। कुछ रिएक्शंस तो इतने हर्ष थे कि यूजर्स ने इसे नॉइस पॉल्यूशन तक कह दिया है। और इस क्रिटिसिज्म के बीच गुरु रंधावा ने सोशल मीडिया पर अमृतसर के गोल्डन टेंपल से अपनी एक फोटो शेयर की है और अब सॉन्ग को लेकर ट्रोलिंग जारी है। लेकिन गुरु की तरफ से कंट्रोवर्सी पर कोई मेजर रिएक्शन सामने नहीं आया है। दोस्तों, अब आपको एक हैप्पी अपडेट देते हैं। जो दोस्तों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलन्ना पांडे, जो एक्टर आहान पांडे की सिस्टर है, अपने हस्बैंड इवोर मैक्रे के साथ अपने सेकेंड चाइल्ड के वेलकम करने वाली है। दोस्तों, अलन्ना ने सोशल मीडिया पर प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट शेयर की, जिसके बाद फैमिली और फैंस की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस का सिलसिला शुरू हो गया है। और दोस्तों, उनकी कजिन अनन्या पांडे भी इस गुड न्यूज पर अपना प्यार और एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करती नजर आई है। पांडे फैमिली में एक बार फिर

खुशियों का मौका है। दोस्तों और अब बात करते हैं एक छोटी सी स्टार की जो बॉलीवुड में ऑफिशियली डेब्यूट किए बिना ही काफी पॉपुलर है। जी दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ राहा कपूर की। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा के बारे में उनके ग्रैंडफादर महेश भट्ट ने रिसेंटली इंटरेस्टिंग बातें शेयर की हैं। महेश भट्ट के मुताबिक राहा की लाइवली पर्सनालिटी ने पूरे घर का एटमॉस्फेयर ही बदल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि राहा की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि फ्यूचर में वो अपने फेमस पेरेंट्स रणबीर और आलिया को भी पीछे छोड़ सकती हैं। दोस्तों अब एक इम्पोर्टेंट और हार्टवार्मिंग अपडेट आसाम से है। फ्लड हिट आसाम में रिलीफ एफर्ट्स के लिए एक्टर्स भूमि पेडनेकर और रणदीप हुड्डा ग्राउंड पर पहुंचकर अफेक्टेड कम्युनिटीज की हेल्प कर रहे हैं। रणदीप हुड्डा फ्लड वाटर के बीच फैमिलीज तक जरूरी किचन आइटम्स पहुंचाते हुए भी नजर आए, जबकि भूमि पेडनेकर ने भी रिलीफ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है। दोस्तों इसी बीच कॉमेडियन समय रायना ने भी आसाम फ्लड विक्टिम्स के लिए अपनी तरफ से हेल्प का हाथ बढ़ाया है। समय रायना ने 10 लाख आसाम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किया है। और दोस्तों नेचुरल डिजास्टर के वक्त सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स का सपोर्ट अफेक्टेड फैमिलीज के लिए अवेयरनेस और असिस्टेंस दोनों बढ़ा सकता है। दोस्तों और अब एक मच अवेटेड बॉलीवुड कमबैक है। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा लगभग 8 ईयर्स के ब्रेक के बाद बिग स्क्रीन पर वापस आ रही है। जिया दोस्तों फिल्म बटवारा 1947 के साथ फिल्म में वो सनी देओल के ऑपोजिट नजर आएंगे और फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आमिर खान। और दोस्तों फिल्म प्रमोशन के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद एक पेपराजो पेज ने क्लेम किया कि प्रीति ने आमिर खान को इग्नोर किया। लेकिन प्रीति जिंटा ने इस क्लेम पर रिएक्शन देते हुए पेज को कॉल आउट किया और उसके कंटेंट को क्लिकबैट और नेगेटिविटी प्रमोट करने वाला बताया। दोस्तों यानी एक सिंपल प्रमोशनल मोमेंट भी सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशन का रीजन बन गया है। और दोस्तों अब थोड़ा ओटीटी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको मिलिट्री स्टोरीज और इंडियन डिफेंस हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ऑपरेशन सफेद सागर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। रोमांस और कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए तमिल रोमांटिक कॉमेडी इधायम मुराली नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और एनिमेशन और एडवेंचर लवर्स के लिए द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी जियो हॉटस्टार पर आया है। तो दोस्तों वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए ऑप्शंस काफी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों ये था आज का बॉलीवुड अपडेट्स। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर दिन एक नई स्टोरी लेकर आता है और हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं स्टोरीज में से कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहे। मैं हूँ आपकी वीडियो दोस्त गीची कनिक। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ नए फिल्मी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कनेक्टेड रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ। इसी के साथ ही चलिए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा नगमा।

इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि आगस्ट लिवनी आकु तारिख देवबार इपोहांसों आजमबाज पुनी मिनट मुख्य पेशम लकेम वांचो जायका पां कपई पोवा काहो पाए फाले पां का वांगसु हाइंगे इंडिपेंडेंस डे नी मन मा पेट्रोटिज्म देश यूनिटी हिया देश कल्चरल हेरिटेज अहो आंगाइले हमको हमको तो जो देश निलोक अदन अजोंगले अदन अजों अंग खनकनु सापुकु मा सोंक्या हर घर तिरंगा कैंपेन अनि मखंग होवंग वांगले बोम महाजा कैंपेन इजा ले नि बन अन्न तारिक कब ल चंगै चंगतेले हाजे कैंपेन हो हो मा आजादी का अमृत महोत्सव पुन पुन मन मा 2022 जांग पुन मखंग होवंग वांगक्या चंगक्या बोम महाजा अथा दे संकेता आचों के खनकनु पार्टिसिपेशन मूवमेंट्स अंग यो आचंग ले सतना बोम महाजा कैंपेन आजा क्या जंगपुम सेसी होने खट खट क्या अं आजा क्या जंगपुम मा इंडियास नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम साई जिंगे जाओ के पाए मा जंगपुम हो तब पुनी बन गोई अं क्या मन मा सॉन्ग क्या 150th एनिवर्सरी प्रोग्राम पाए चु आठो ले सत्को ले सत क्या चंगते दे अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पर्णय के मणि ईटानगर लोक भवन मा स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी डॉक्टर एस डी सिंह जमवाल फै स्टेट लोहिया ऑर्डर 21 मो वनजेले बोमा होखी एजा मा अथा पों के सिक्योरिटी 21 क्राइम अब अजक अंक्या मोथोसजु खनकनु सेफ्टी तलक्या डिसास्टर ट्विटर जंग जाई हनपंग मा अचोनाथा तयंगो अंक्या बोमा तलक्या चु तोयताई जंगजाई हायदों पुलिमा अंग स्टेट पुलिस थम होहुमा जो अचोनाथा तयंगो हम अंक्या मो वनजेले गवर्नर राजा बोमा डीजीपी फाइ तिराप चांगलांग हे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट फो अंक्या सिक्योरिटी 21 मो चु वनजेले बोमा ची हजा मा हजा रीजन जंग तो ngai dong le ngozai taikya moon sin extortion sia kidnapping ningkya toi tai ahik awang puku ma haja honoi jang to jingejau angsal le ngo

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वांगचो बोली में समाचार। वांगचो श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRN 666 किलोहर्ट्ज पर। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं कुछ हिंदी फिल्में नगमे और

0: दोस्तों अब आप सुन पाएंगे इडुमिस में बोली में समाचार।
1: श्रोताओं का कार्यक्रम ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं इदू मिसमी श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर पुयला पुची हिखिनी इन्या मैलिनी ऐतनिची इटुमिस्मी आहोला के जी दरगालंबो इंडिया तिका के बने उजिदा एक के ओचा ओको के अतिका ची असला ठुजी नाला ने ऐतने ने अब ऐचला पुची जी होलु मचिंग निबा कैंपेन अखगाव दा ला होगा बाहा इन्हु ऐजा के आन्य होगा ने मचिंग ने ओ इन्हु मामा पुयला पु ऐजा कैंपेन अखगाव जमा हो ऐतने है बंदे मातरम आशे खाएबा माओ मगन होनुबा इनुमा ला तचिगे ने ऐसा कैंपिंग छिगा जिदा ला होगा अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर के टी पटनायक में बुनी अतिकाबू है थोपुचिप अरुणाचल प्रदेश पुलिस ए पी पी माचे डी जी प्याजा डॉक्टर एस डी जामवाल गो इटानगर से लॉकडाउन मने छिचागापा तिराप चांगलांग बने लॉन्गलिंग डिस्ट्रिक्ट अतिकामा म्यांमार मा दुनुने आहुमी यामे आमे आशे हर तगा अथुगे ने म्यांमार गो पोगा आ आति पहेंदो ला तानो दा सिंगा सगा चा है दुमी सान्दो चेना लाते बदा होगा गवर्नर ने डीजी प्याजा में अतिकाची इमु बुई आचाचा अदुई काची इगाओ महो हर तवे एदो ने बुंदालीची उगा में नगो हुगा निगा नाओगे बने पुलिस आलम्रो ट्रेनिंग आहिते वे थोपुची पुआची जगा ही बदा होगा अरुणाचल प्रदेश चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार गुप्ता में बुनी तिराप डिस्ट्रिक्ट माचिन डेवलपमेंट थोपु चिपुआ मीटिंग चीन गाने गवर्नमेंट ची स्कीम दो ने प्रोग्राम दो ची आ डिस्ट्रिक्ट मा जोने का चाहे प्राने जोने ऐदो ने जीपो तेल को महो जोन दो ची ना ने डिपार्टमेंट आ जाहे तालम्बो को लाते गाने डिपार्टमेंट आलम्बो में आ जोता प्राने जो का ची ना लाते बता होगा खुनसा दो ने देवमाली ला पगे आ डिस्ट्रिक्ट माचे अतिकोंदो से दे अखाओचिपो अतिकाचिमु अलम्रो है अजालम्रो में अलाजीची नाने चीफ सेक्रेटरी में लाती वापदा होगा बुनी ईटानगर ची खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम मने बुहोलो सोली नबार जर्जी खांडू मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप अखापगा ममा

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारी दूसरी प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सबको बेहद पसंद आए होंगे। और इसी के साथ ही आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे तांगसा बोली में समाचार। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि आगे के कार्यक्रमों के सफर में, यानी हमारी तीसरे प्रसारण सभा में आपके साथ जुड़ेगी आरजे नीलम। तो अब आप मुझे, यानी आपकी रेडियो साथी गिची कनिक और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद तमाम सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक दीतांजन तथा तकनीकी अभियंता नंद कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिन।

अरुणाचल प्रदेश वांगचीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार गुप्ता आईएएस र मनाई तिराप डिस्ट्रिक्ट नांग आरेंग डेवलपमेंटल इनिशिएटिव ताम पर रायवांग तंगुरु त मीटिंग का थुंग तनांग बली बाय सेक्टर ताम नांग मचो डेवलपमेंटल काम सोम र मान पर फानरो होमोय नांग ते छेइम क्वालिटी अहु जांगरांग आरो नरीम रायमायरो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कजांगरो प्रोजेक्ट काम पर सोम मरु त परम अशा पा तगयांग म क्लीनलीनेस काउ म अवेयरनेस तक यांग म परम सबरप पर नरी म चुकरो खुनसा नई देवमाली टाउन पर अचा पा म नुंग म गवर्नर रूप द अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू र मनै ईटानगर वांग खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम नंग रंग बंगा रांग म लक्सरा रोम दर्जी खांडू मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 पर तफांग तक रूप द परजु मचुपांग मसो पर चैंपियनशिप में एनुअल फाइनेंशियल सपोर्ट पर अफंगनंग लाखों बंगा जंग तवंग लाख बंगा जंग तचेन में चीफ मिनिस्टर अनाउंस करी तो मोरु तो स्टेट नंग बैडमिंटन खेल काउ पर सहंग में पर में यंग प्लेयर्स हैं पर अजूंग प्लेटफॉर्म नंग तकली करक में पर फाइनेंशियल सपोर्ट पर तचेन तो मोरा वो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू रो रूप तो अरो चैंपियनशिप में लाख बंगा जंग गन तचेन तो पर कुडा का चिंग मोरा वो चीफ मिनिस्टर का खाम कुत परम स्टेट नंग जलाउ म स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर थजुंग र कमुंग नंग फान रौ सांगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी को नंग अपीर हजार खुरा रचे सनत स्क्वायर मीटर हा डोनेट कुत नंग दर्जी खांडो बैडमिंटन एकेडमी खाक्षी मो रु त मचौसा रंग तको तारीख म अगस्त लिंग रंगसा सनत तारीख तक लाउबंगा एडिशन हर घर तिरंगा कैंपेन तेजांग रनांग अरुणाचल प्रदेश वंग कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर दासांगलु पुल र अरुणाचल प्रदेश वंग मई नाउ परजु पार्टिसिपेट कजांग मरु द लग मचे से इंडिपेंडेंस डे सकान नंग प्र कैंपेन पर तेजांग रनांग कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर दासांगलु पुल र मैसेज कुत नंग अरुणाचल प्रदेश वंग वसडोप डिस्ट्रिक्ट नंग पर नेशन वाइड कैंपेन पर अहु म तगयांग म स्टेट गवर्नमेंट र लाम रंग रु त अरो इंडियन सटलर अस्मिता चलिहा र मचोरना चाइना वंग हान क्वेन जी प वोमेन सिंगल फाइनल नंग चेरो कोरिया मास्टर 2026 प चेतंग रु त परक चाय अस्मिता र मनै सेमी फाइनल नंग इंडिया वंग होन रक्षिता रामराज प चेरो फाइनल न थोक त रुमरांगे तानांग थुमरो

अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि तांगसा श्रोताओं का कार्यक्रम हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा डीआरएम 666 किलो हर्ट्स पर अभी जारी है। आप जुड़कर पूरे कार्यक्रम सुन सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सभी श्रोता मित्रों का इस तीसरे प्रसारण सभा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर मैं हूं आपकी इस सफर की हम सफर, आपकी अपनी रेडियो साथी नीलम। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 4:27 हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस प्रसारण सभा की शुरुआत

कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में आज हम इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की बात करेंगे जिसने अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती देते हुए स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं काकोरी कांड यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन की। देश की आजादी के संघर्ष में कई ऐसे घटनाएं हुई जिन्होंने अंग्रेजी शासन के नींव तक हिला दी। इन्हीं में से एक था 9 अगस्त 1925 का काकोरी कांड, जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA से जुड़े 10 क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटकर ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी थी। अंग्रेजों के अत्याचार से देश में आक्रोश चरम पर था। क्रांतिकारी ये समझ चुके थे कि आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए धन जरूरी है। इसी उद्देश्य से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह समेत अन्य साथियों ने योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 ये वो तारीख है जब क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी से गुजरने वाली एक ट्रेन में डकैती की। इस घटना का मकसद था कि इस लूट से इकट्ठा होने वाले पैसों से हथियार खरीदे जाए और भारत पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जाए। अंग्रेजों ने इसे डकैती का नाम दिया और इसमें शामिल राष्ट्रीय नायकों को अपराधी करार दिया। इतिहास में इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, जी हां, जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन से भी जाना जाता है।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से ये गीत सोनू निगम और मनमोहन वारिस की आवाजों में। आपको बता दें कि आप बने हुए हैं रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर, जिसके तहत आज हम बात कर रहे हैं काकोड़ी ट्रेन एक्सेंट डे के बारे में। काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार में हड़कंप मच गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के करीब 40 सदस्यों पर मामला दर्ज किया गया। कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। लंबा मुकदमा चला। 1927 यानी कि 1927 में अंग्रेजी हुकूमत ने रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्रनाथ लाहली और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई। उन्हें बचाने के प्रयास भी हुए, जिनमें मदन मोहन मालवीय की कोशिशें शामिल थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने फैसला नहीं बदला। काकोरी कांड ने पूरे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई दिशा दी। इन क्रांतिकारियों के बलिदान ने लोगों के भीतर अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश को और भड़का दिया, जिसने आगे चलकर आजादी के आंदोलन को मजबूत बनाया।

श्रोता मित्रों, इतिहास गवाह है। जब जब शासन करने वालों ने अत्याचार और दमन की सारी हदें पार कर ली, तब क्रांतिकारी का सैलाब उमड़ता है और क्रांति का रूप धारण कर लेता है। फिर सारी व्यवस्था बदल जाती है। काकोरी ट्रेन एक्सेंट डे की वर्षगांठ पर श्रोताओं, आइए देश की स्वतंत्रता और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूतों का नमन करते हैं।

0: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे कार्यक्रम का ये आखिरी गीत विभा की आवाज में आर्टिकल 370 फिल्म से। आपको बता दें कि इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता मित्रों, आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को, और 5 बजते ही आप सुन पाएंगे नौकते श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: जाने दे मुझे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। विश्व के जनजातीय लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने स्वदेशी ज्ञान परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बारिश के कारण पहलगाम और बाल्टल दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहान ने आज शानदार वापसी करते हुए विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने उपनिवेशिक शासन में मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने यह बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। सिंदूर महारक्तदान यात्रा का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जहां ऑपरेशन सिंदूर ने भारत का शौर्य दिखाया, वहीं यह विशाल रक्तदान शिविर करुणा और संवेदना का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि शिविर में महाराष्ट्र के करीब 1000 पहलवानों और खिलाड़ियों ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि यह पहल निस्वार्थ सेवा और सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता की भावना को दर्शाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हर रक्तदाता और रक्त प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने अपने तरीके से रक्त की सेवा कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से रक्तदान को एक नियमित आयोजन बनाने का आह्वान किया। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े

जनभागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य और जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन एवं लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। मंत्रालय ने बताया कि एनबीए द्वारा अब तक किया गया कुल वितरण 166 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वितरण जैव विविधता संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और भारत के समृद्ध जैविक संसाधनों के संरक्षण में जुटे समुदायों की आजीविका के बीच संबंध को और मजबूत करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा उपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून 3 महत्वपूर्ण स्तंभों, प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास पर आधारित है। श्री शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य अधिक प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुडुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भागीदारी के दौरान यह बात कही। पुडुचेरी पुलिस को बधाई देते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालांकि पुडुचेरी पुलिस में 5,000 से कम कर्मियों की संख्या है, फिर भी उसे पुडुचेरी की रक्षा करने, इसकी आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और समृद्धि आध्यात्मिक विरासत वाले इस केंद्र शासित प्रदेश के सम्मान और गरिमा की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने के इस ऐतिहासिक अवसर के साथ पुडुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। विश्व के जनजातीय लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने स्वदेशी ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने जनजातीय समाज के बुजुर्गों और ज्ञान संरक्षकों की परंपराओं और बुद्धिमत्ता को नमन किया। उन्होंने सभी से अपने समुदायों को मजबूत करने और राष्ट्र को आकार देने वाली संस्कृतियों का उत्सव मनाने का आग्रह किया। राज्यपाल नंद किशोर यादव ने भी इस अवसर पर आदिवासी समाज के प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने और समृद्ध संस्कृति, परंपराओं तथा विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल संरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता के अनुसार 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जलंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेलवे लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। इसके अलावा सांबा जिले में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का संचालन शुरू हो गया है। कठुआ, अनंतगांव और जम्मू में भी इसी तरह के कार्गो टर्मिनलों के लिए मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में चालू चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक

0: उपाय करने पर जोर दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज शाम दिल्ली में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बारिश के कारण पहलगाम और बालटल दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा का अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से किसी भी नए यात्रा जत से को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालटल बेस कैंप में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28 जत से को 44 वाहनों के काफिले में जम्मू के लिए रवाना किया गया। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा ने आज शानदार वापसी करते हुए विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage. The campaign marks the fifth year of the Har Ghar Tiranga initiative, which began in 2022 and has since evolved in one of the country's largest public participation movements. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. Vice President C.P. Radhakrishnan today hoisted the national flag at the flag point in Sri Vijayapuram, the capital of the Andaman and Nicobar Islands, as part of the Har Ghar Tiranga campaign. On the occasion, he paid tribute to the brave freedom fighters. The Vice President also attended the state function Tiranga concert on Vande Mataram held at the auditorium of Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology. In his address, the Vice President recalled the glorious history of the Andaman and Nicobar Islands associated with India's freedom struggle. He said this is the very land where freedom fighters endured severe torture and unimaginable hardships for the country's independence. Mr. Radhakrishnan is on a two-day visit to the Andaman and Nicobar Islands. In Jammu and Kashmir, the spirit of patriotism will resonate across the Union Territory from today, as all 20 districts launch a week-long series of programs under Har Ghar Tiranga Campaign 2026. The programs will continue till August 17. Mass singing of Vande Mataram, Tiranga rallies, exhibitions, cultural programs and competitions will be organized across the Union Territory. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi today paid tribute to all those who participated in the Quit India movement. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that they united the nation in the struggle for freedom, taking the inspiration from Mahatma Gandhi's clarion call of do or die. In a social media post, the Prime Minister said, inspired by the leadership of Mahatma Gandhi, the clarion call of Quit India infused new energy into India's freedom struggle and reflected the unwavering determination of the people to break free from colonial rule. Union Home Minister Amit Shah said that the three new criminal laws introduced by the Modi government, replacing the colonial era laws

0: are based on three important pillars: technology, timeline and trust. He said this while participating in the presentation ceremony of the president's police color to the Puducherry police at the police training school ground in Gorimedu. The National Investigation Agency, NIA, has arrested another accused in connection with the seizure of a huge consignment of illegal explosives in Malappuram, Kerala. The agency informed that the accused was arrested yesterday from Manjeri in Malappuram district. NIA said that the accused is a main conspirator and was involved in the illegal procurement of the explosives seized in the case. The latest arrest comes a day after the NIA arrested three more accused from Vijayapura in Karnataka on Friday, taking the total number of arrests in the case to 10. The deadlock over alleged irregularities in JPSC and JSSC recruitment examinations continues in Jharkhand, with a third round of talks between the government and protesting student organizations underway in Ranchi. On the occasion of Independence Day, 124 eligible prisoners in Madhya Pradesh will get a deduction in their sentences. Of these, 118 prisoners serving life sentences will be released early. Six other eligible persons will get special remission. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे
2: अपे आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़ व नोक्ते प्रोग्राम अथुए सैनहम वैन मंगा बाजी डंग के थजा अगस्त जंग वैन खु तारीख दोबे जा खोबो चोको एक तुम्हंग ऋतु में खोबोरे डंग के हर घर तिरंगा कैंपेन पे थजा फुमे बंग डंगला में अगस्त छी वैन सत तारीख तो को डंग मिन अपे डंग के नंग दियक जंदा पे मामा हुम नंग बट रेली में चिंतो नंग दियक रंग कंग प्रोग्राम हे नंग मिन लुट रंग ना के अरे प्रोग्राम पे 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव को बंग डंग वा नले थपा नंग दिया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम से पे चा थे रूप गा रंग पा डंग मानी पे जो पुन रेके अंगा मजा ईटानगर नंग लोक भवन को नंग अरुणाचल प्रदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी डॉक्टर एस डी सिंह जामवाल गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक रिटायर्ड दमनंग चोमिनवा ngame chutet eti अरे को गवर्नर में नंग स्टेट पुलिस के अकाम हे थोंगफावा ngale अते में तिरप चंगलंग लोंगडिंगवा खोबोट हे मिन कवा ngame chutet eti अकोटे में बर्मा जे रिवा पेन हुन पुमिन चाचाता हुन रंग ngetवा गवर्नर में पुलिस हे नंग जुलुम हारुत हे जे सोक रंग खमा में खोखम तुएन तोंगला रंग चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार गुप्ता आईएएस मेजा तिरप व गवर्नमेंट स्कीम मोट अकेट पे जेसोक वंगवा वे चुटेट की अरे को तेमे मोट जन जन काम हे मिन सैम पुट को ngale संथम थम ट्वेन मोट रंग ngake ngale चिंतो डिपार्टमेंट तोंगा अहे रोम रोम में मोट अकेट रंग ngake ngame जो चुटेट की खुनछाले ड्यूमाली थैन हे मिन सा पोंग पोंग थीन रंग ngale पब्लिक हे नंग अरे सा पांग इन पैसन थम थम बुजा थोकु रंग ngake ngame मजा चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू में जा बंगा रंग छी दप रम थियक रंग दोरजी खंडू मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप पे लांगवा ngame चोटे की ईटानगर व खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम को ngale थपा फुमे लाख रूप मंगा मुन हो हे को मिन अरे तुट लो मिन को ngame चुटो कुवा अरे लांग प्रोग्राम को निन थो सैंपल को ngale संगे लादन स्पोर्ट्स एकेडमी के को हाजेट रोकनी चाय सेट स्क्वायर मीटर हा अते में को के पे दोर्जी खंडू बैडमिंटन एकेडमी हुआन मिन ngame चुटो को एही कल्चरल अफेयर मिनिस्टर दासांगलू पुल में डब बंगा थियक रंग हर घर तिरंगा कैंपेन पे वैन खू तारीख पुमे छी वैन सत तारीख टोको

अभी आप सुन रहे थे बारी बारी से समाचार। पहले आपने सुना हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और अभी आप सुन रहे थे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि नुक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जारी है। आप जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं रुन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आपको बता दें कि इस वक्त समय हो रहा है शाम के 5:06, और इसी के साथ ही प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। श्रोता मित्रों, आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए श्रोता मित्र, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं पहला गीत तारा रमपम फिल्म से।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे ब्रह्मास्त्र फिल्म से ये गीत अरिजीत सिंह और जुनिता गांधी की आवाजों में। श्रोता मित्र, परिवर्तन प्रकृति का नियम है जिसके सामने संसार की हर शक्ति विवश है। चाहे कोई राजा हो या रंग, सत्ता का घमंड हो या समय का पहिया, बदलाव सबको अपने दायरे में ले ही लेता है। इस सत्य को दर्शाता एक छोटी सी कहानी आज हम पेश कर रहे हैं। एक समय की बात है, आर्यवर्त में सम्राट भानुप्रताप का राज था। उनका राज्य बहुत बड़ा और धनवान था। भानुप्रताप को अपनी सत्ता और ताकत पर बहुत घमंड था। वो खुद को भगवान से भी बड़ा समझता था। सम्राट ने अपने महल के बाहर एक बड़ा पत्थर लगवाया। उस पर खुदवाया गया, मेरी सत्ता और मेरा यह साम्राज्य हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसे कोई नहीं बदल सकता। एक दिन एक बूढ़ा संत महल में आया। उसने सम्राट से कहा, राजन, यह भ्रम छोड़ दो। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तुम्हारी सत्ता भी बदलेगी। सम्राट को गुस्सा आया। उसने संत को जेल में डलवा दिया। हंसकर बोला, मेरी सत्ता को कोई बदल कर दिखाए। समय बीतता गया। कुछ साल बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए, प्रजा भूखे मरने लगी। दूसरे राज्यों ने इस कमजोरी का फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया। सम्राट भानुप्रताप की सेना हार गई, उसका महल लूट गया। जिस सत्ता पर उसे घमंड था वो धूल में मिल गई। सम्राट को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे संत की बात याद आई। उसने समझ लिया कि प्रकृति के नियम से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती। जी हाँ श्रोता मित्रों, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, समय उसे झुका देता है। बदलाव ही एकमात्र ऐसा सत्य है जो कभी नहीं बदलता। तो चलिए इसके साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको अगला गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह, नीति मोहन की आवाजों में। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। जी हाँ, आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम शाम की महफिल। तो आप बने रहे अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

कार्यक्रम शाम की महफिल प्यार भरा एक खूबसूरत संगीत का सफर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ श्रोता मित्र, कार्यक्रम शाम की महफिल का ये पहला गीत आप सुन रहे थे, कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। तो चलिए श्रोता मित्रों, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं चीनी कम फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में।

मदहोश दिल की धड़कन चुप सी ये तन्हाई। जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का एक बेहद ही लोकप्रिय और प्यार भरा ये गाना, जिसे लता मंगेशकर और कुमार सानू ने अपनी जादुई आवाज में गाया। जी हाँ दोस्तों, आनंद बख्शी के बोल और जतिन ललित की धुन। श्रोता मित्र, एक बार फिर से आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का। आपको बता दें कि फिलहाल हम कार्यक्रम में ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे सैयारा फिल्म का ये बेहद ही प्यारा गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। आपको बताते कि इस गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद है आप सभी को कार्यक्रम में सुनवाए गए गीत पसंद आए होंगे। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का सफर आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हम ले रहे हैं ब्रेक।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे गजनी फिल्म के गाने।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, जिसके तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं गजनी फिल्म के बेहतरीन गाने। आपको बता दें कि साल 2008 में आई ये एक बेहद ही लोकप्रिय फिल्म है, जिसका निर्देशन ए.आर. मुरुगा दोस्त ने किया था और इस फिल्म के मुख्य भूमिका आमिर खान और असीन ने निभाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी थी। और आपको बता दें कि इस फिल्म के गाने काफी हिट हुए थे, जो कि संगीतकार थे ए.आर. रहमान। तो चलिए, इसी के साथ ही कार्यक्रम में हम ले रहे हैं एक अंतराल।

0: C'est Stead Sox, c'est Sangisana Youth, Kidding, Kelly Ipenam, Akoda, Mewom Silla, Yadop, Ayap, Kelly Bosidop, Igabotung. Delo, Lekof, Sangela Din Esports Academy, Luyulok, Pemakan Luka, 20,700 square meter among Mkom, Dorji Kandu Badminton Academy, Igabotof, Supagruro Bomdung, Mlankom, Sit Minister Bilutembido. Barosok badminton kelina Asmita Salihabu Saina Lok Han Kyan Sim final lo Igum Phala Korea Masters 2026 lok champion Amanem Pangatung Korea Master 2026 lok Aman Panam se Asmita Salihak ke kerang yalum na bodde na Aman Panam pe idung emlangkom lukandao. Ditak angon apa na harga tirangga kempen pebo iga bonam so istat sok mi pimiong takam e apa ang rupa imenyemun galangka emla cultural affairs minister dasang lo pul peluga bodo kempen pebo sim silo kelonga sok ke iropom la polo sok lo ingko langka nitari elopo ilik bom ye. Sinyingka ditak so harga tirangga pebo sok leko leko fe national song bande mataram lok 150 ditak go hu pebo emkom lo dum ilusi ye. Kempen pebo simbarot sok mole takam lo ibom ye ila ona sol podes sok iste distik takam lokom pebo sim irga muaru pe lo dum bom ye emlangkom lukan bido sok leko leko pesim kalutadem solindung.
1: अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि आदि श्रोताओं का कार्यक्रम आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा DRM 666 किलो हर्ट्स पर अभी जुड़ सकते हैं। श्रोता मित्रों, चलिए हमारे अरुण FM के कार्यक्रमों को आगे जारी रखते हुए पेश करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम आज के कलाकार। टीवी और फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रीमा लागू आज के हमारे कलाकार फनकार हैं। वे मां के दमदार किरदार के लिए जानी जाती थी। अभिनेत्री रीमा लागू का नाम जब लिया जाता है तो सबसे पहले एक मां के रूप में उनकी छवि बनती है। फिल्मों में मां की भूमिका अदा कर लोकप्रिय हुई अभिनेत्रियों में रीमा लागू भी शुमार है। रीमा लागू ने कई फिल्मों में सलमान खान की मां की भूमिका अदा की, इसलिए उन्हें सलमान खान की मां कहकर भी पुकारा जाने लगा था। अभिनेत्री ने हम साथ साथ है, कुछ कुछ होता है और वास्तव जैसी फिल्मों में भी मां का रोल यादगार तरीके से निभाया। सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, निजी जिंदगी में भी रीमा एक मजबूत मां बनी रही। तो श्रोता मित्र, उनके बारे में आगे भी हम जानेंगे विस्तार से। फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं वास्तव फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

आप सुन रहे थे वास्तव फिल्म का ये खूबसूरत गीत सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। श्रोता मित्रों, 21 जून 1958 को जन्मी रीमा लागू को अभिनय की प्रतिभा विरासत में मिली। उनकी मां मराठी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस मंदाकिनी थी। रीमा का असली नाम नयन भड़बड़े था। रीमा ने बतौर बाल कलाकार इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, फिर कुछ वर्षों तक थिएटर भी किया। बाद में उन्होंने बैंक में भी नौकरी की। दरअसल उन दिनों बैंकों का इंटरबैंक थिएटर कंपटीशन होता था, जिसमें एक्टर्स का कोटा होता था। इसी के तहत इनका चयन हुआ। नौकरी करने के दौरान रीमा की मुलाकात मराठी कलाकार विवेक लागू से हुई। दोनों ने शादी की। शादी के बाद रीमा ने अपना नाम रीमा लागू कर लिया। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और कुछ वर्ष बाद दोनों अलग हो गए। दोनों की एक बेटी मृण्मयी है। पति से अलग होने के बाद रीमा लागू ने दूसरी शादी नहीं की और अकेले ही बेटी की परवरिश की।

श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। और आज हम बात कर रहे हैं दिग्गज अभिनेत्री रीमा लागू की। आपको बता दें कि रीमा लागू ने सन 1980 में फिल्म कलयुग से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। उन्होंने कई फिल्मों में उम्दा किरदार निभाए। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन के लिए उन्हें 1990 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। आशिकी और वास्तव के लिए भी उन्हें ये सम्मान मिला। फिल्म वास्तव में तो उनके किरदार को देख लोगों को मदर इंडिया वाली नरगिस याद आ गई। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन काफी हिट रहा था। रीमा लागू छोटे पर्दे की भी चर्चित अभिनेत्री रही।

कई सीरियल्स में भी नजर आई। उन्होंने तू तू में श्री राम श्रीमती में काम किया। इसके अलावा महेश भट्ट के सीरियल नामकरण में भी वो नजर आई थी। तो चलिए इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे हम आपके हैं कौन फिल्म का ये बेहद ही लोकप्रिय गीत। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि पर्दे पर माँ के किरदार के लिए मशहूर हिंदी सिनेमा की अदाकारा रीमा लागू ने 2017-18 मई को दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया में उनके योगदान के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा।

एक कार्यक्रम का आखिरी गीत हम साथ साथ है, फिल्म से हरिहरन प्रतिमा राव और घनश्याम की आवाजों में। श्रोता मित्रों, हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री रीमा लागू पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार।

노소남바로토차라모크가니그데네세그그모두발라바로드가세고그고남테함울룸고바세그그모두코바소크리고멘고함르멘르프갈라마나모두코바소크리그멘그사함르멘르프갑쿠마함라멘파타토ओक आजादी का अमृत महोत्सव हम मुख निगत ने आखिन गोब मना मधुकोब सिकने कैंपेन में नाम हम 2022 अनि होक रेबग कुम ओक भारत ने आखिन गोब ला अलब पागद बद खुब मुख आखिन दुखने हम ला हेंचिन काचिन मधुकोब सोक मुख ग एज जानता हम नाम लो तोर्चा बचाला शेग ग कुनाम हम这个八个摩托库的恩尼大哥和摩克哥给他们说了你给他呢妈呢가메도쿠바리가파가각도쿠나마오카바르드가내셔널송반데마타람멘남함피니치브르아켄골라창고남함리타케멘타나바세니가캠페인함리그가그리크라내셔널플래그라내셔널송멘남함알바메그사가리크라오시네남테로마나가드쿠바리가푸크나바함라멘파타도오케시크남마나가남바모크가쿰수쿠브라크다므르로반데마타라멘남심메그톰그모도쿠브리타푸크나바함라멘파타도अरुणाचल प्रदेश स्टेट का गवर्नर के टी फरनाई के अमोर के फ्वा आल हो ईटानगर का लोक बाबर लो डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर एस डी सिंह जामवाल ने कार्य तारीख से ग्रीक लासो स्टेट का लोक ओरदार का लिख लो कादर तापा मिशपुक नम खम में पा दो और कचेतर में तो लासे के दाग साग लिख लो ला आलमा बे रिनाम पनाम के आगो लो ये मुला हेंटर का तोर जिसे ते पब्लिक निगत ने आलवे सेम के म दोको बा आ योगो रिता बोलो योग रिजमेंट साथे ओका स्टेट पुलिस गुड़ का अलावा रिक पाग सा लेक लोक आगम आम लोक हम सोक निदुम ऐन ह मैं वो जब का मिस पुकर बखम मैं पा था तो ओके स्टेट का दम अर पर लो डेवलपमेंट लगा रिबमेंट गस हम रिक पाग रिक ला बिक्षित अरुणाचल सिम अलावा चेंद पाद कुब रिद कुर हम ला गवर्नर ये जब ता पुकर बखम तो ओके तीरा ब्ला चांगलांग लोंगतिंग गुदा लो चेतरमेन तोरला सेगदा का साग लुख लोक आगम आहम गवर्नर ये जाबका बका मिसे ताप कुम ओके सोक तायो लो केलेक आलबा मुरली मुरको हम कोरे कोचे के लामा मोद बला नि हम नुतेन पाग ला ब्रोम लारम मोला मादु कुब सुलुस कोर्शम निबा आलबा रक्तम तुक्का हम ना गवर्नर ये डीजीपी ने जाबता पुकुना ब हम तो ओक अरुणाचल प्रदेश ते गो मुइद मो लेलेब रेक लो आता लो तितु राचे के चेक रेक ला सेविक इस लेलेब ओक कीब आलमान रिगो मेंगो गो रिदा बोलो फुलिस गते ने आलेन युक यारा हम जिगरिक ला आलमे हिंदर कादर मत कुका हम ला धर्म केती फरनाइक ये डीजीपी ने जब तापुक ने हम में पाता तो नुलसिन शिपु शिमा कास्वाने तानो पुकुम लोक थाल दोन्या तो मोर फॉर अल हो इताना कर के खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम लो अलो लो गोब लिग्री गोला लिगुम नन दोजे कांतो मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 हम ब्रिग मोद कोब चीफ मिनिस्टर फेमा कांतो ये तोको के जिलंग के ग्रीक ला सोक चैंपियनशिप के खुन ग मुरली मोर को हम अनि लो चैंपियन गोला आंग ला के जिजि कुनाम हम तुतिया ब सो चांग लाक गोब सिनि गोल क जित कुब जाबलन जिप कुब खबला मेम पा दो ओके स्टेट लो बैडमिंटन ग फोले लो अलबर लन तागलन ग म तब ला शिक्षा ग चा देने निजिरिया पा ग देने कई ने केला दोला नाम ते लो लन तागलन नाम दो कु सो क मुरली मुर को ह यकतम जिला यगलन जिप तु कुन ब खबला शोक आलो लो नर ब खांदु ये अगमा जाप खला रेद कुला चपा पुकन ब खबला मेम पा था तो ओक सोक थायो लो सोंग

0: अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि निशी श्रोताओं का कार्यक्रम हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर अभी जारी है। आप जुड़कर पूरे कार्यक्रम सुन सकते हैं। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार शाम के 7:06 हो रहे हैं। और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। महिला जगत कार्यक्रम के इस अंक में आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट पर। और ये कार्यक्रम इसलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी है अलग अलग सेक्टर्स से हमारे महिला साथी, और हम सबको वुमेन एम्पावरमेंट पर जानकारी देने के लिए या जागरूक करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर लिखा किरण, सीनियर फैकल्टी कम डेप्यूटी डायरेक्टर SIRD एंड पंचायती राज अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर में। तो एक दूसरे को जानने के लिए और आज स्टूडियो में कौन कौन मौजूद है उसके लिए मैं चाहूंगी कि हमारे जो महिला साथी आज हमारे बीच यहाँ पे कार्यक्रम में भाग ले रहे, आप सभी प्लीज अपना अपना नाम हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: मेरा नाम ये विद्यावती कमान पगागे, हम ग्रुप सेंटर चिंपू में बैठता है।
3: मेरा नाम है मिसेस पगबम बसर, मैं FNG सेक्टर ईटानगर में रहती हूँ।
4: मेरा नाम है मिसेस कांगम बसर, मैं FNG कॉलोनी में बैठती हूँ।
5: मेरा नाम है निचियोलम नाबम, मैं ग्रुप सेंटर चिंपू में रहती है और मैं तो चर्च के लिए काम करता मसीह के लिए।
6: मेरा नाम जो है तिलक पार्टिन पाविन, पाविन मेरे मिस्टर का वो टाइटल है और मैं आदि से बिलोंग करती हूँ। उसके बाद ये ग्रुप सेंटर में रहती हूँ अभी फिलहाल।
7: मेरा नाम मारपी अतसोरा, BN सिंपू में रहते हैं और हाउसवाइफ है।
1: सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि आज हम सबके बीच है डॉक्टर लिखा किरण, जो कि सीनियर फैकल्टी और साथ में वह डेप्यूटी डायरेक्टर है SIRD और पंचायती राज अरुणाचल प्रदेश के। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हुए चलिए हम आज का कार्यक्रम शुरू करते। और सबसे पहले हम किरण मैडम से यही चाहेंगे कि आप आज के जितने हमारे श्रोता है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमें ये बताए कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं तो एम्पावरमेंट से क्या मतलब है, वुमेन एम्पावरमेंट एग्जैक्टली किसको बोलते हैं?
8: वुमेन एम्पावरमेंट ये जो मुहिम है शुरू हुआ क्योंकि सरकार को लगा, और इनफैक्ट हमारा जो सोसाइटी है, जिस तरह से हम लोग रहते हैं, सोसाइटी जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, उसमें जो काफी सारा रहने का जो तरीका में और जिस तरह से फैसिलिटी वुमेन को मिलता है और लाइफस्टाइल जो है वो वुमेन और आदमी में काफी मतलब फर्क हुआ है। स्पेशली हमारा जो डेटा का हिसाब से ये देखा गया है कि एक ही घर में रहते हुए भी आदमी से ज्यादा औरत गरीब है। तो ये इसको नजर में रखते हुए

0: वुमेन एम्पावरमेंट का जो कंसेप्ट जो निकला है ये 90s से जो ये कंसेप्ट शुरू हुआ है। तो ये कंसेप्ट इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि देखा गया है कि आदमी और औरत में बराबरी बिल्कुल भी नहीं है, खास करके इकोनॉमिक स्टेटस में और पॉलिटिकल स्टेटस में बहुत अंतर है। जैसे अभी मैंने कहा है औरत लोग ज्यादा गरीब है और औरत का जो पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन में डिसीशन मेकिंग में बहुत ही लो है और प्रॉपर्टी ओनरशिप में भी बहुत अंतर है। वुमेन ज्यादा डिप्राइव्ड है प्रॉपर्टी ओनरशिप में, इसी वजह से ये एम्पावरमेंट का कंसेप्ट निकला है 90s में। 2000 इनफैक्ट 2000 में इसका जितना फैमिलिस्ट लोग ने 90s से शुरू करके 2000 से हमारा एम्पावरमेंट कंसेप्ट जो है अभी हर गवर्नमेंट स्कीम्स में एम्पावरमेंट का कंसेप्ट इसमें डाला गया है। अभी एम्पावरमेंट को लेकर ही बहुत सारा प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट का चलाता है हर डिपार्टमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। तो बेसिकली जो है एम्पावरमेंट को कहा जाए तो आप एक इंसान डिसीशन ले सकना चाहिए, डिसीशन ले सही गलत को चूज करना कर सकना चाहिए। कोई भी इंसान उसमें ऐसा ताकत होना है, ऐसा क्षमता होना है कि वो फैसला कर सके कि सही क्या है, गलत क्या है और हमें क्या चाहिए, मैं जिस किस तरह से मतलब जीना चाहता हूं। ऑब्वियसली राइट चॉइस ही कर सकना है, हमेशा राइट डिसीशन ले सकना है, राइट चॉइस कर सकना है। चॉइस कर सकने का और डिसीशन ले सकने का क्षमता उसमें होना चाहिए, उसमें पावर होना चाहिए, उसी को ही वुमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है। तो वो एम्पावरमेंट को अगर ये करने के लिए देने के लिए एम्पावर्ड रहने के लिए इंसान को वो पावर चाहिए होता है। तो वो पावर कहाँ से आता है?
1: हाँ।
0: तो वो पावर को लाने के लिए ही अभी गवर्नमेंट प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे करके वो पावर ड्राइव करे एक इंसान के अंदर। इंसान के अंदर ऑलरेडी पावर है, लेकिन उस पावर को कैसे निकालें कि वो डिसीशन ले सके, सही फैसला कर सके, राइट चॉइस कर सके। तो बस वही एम्पावरमेंट का मतलब ये है।
1: इसमें मैम एक बात मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे कि हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं या फिर कि हम क्या चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं, क्या ये सब जो डिसीजन मेकिंग है देखा जाए तो उतना जो हमारी बातें हैं वो सुनी नहीं जाती है। तो ऐसे में क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो रिलेटेड है इसमें?
0: हाँ, ऑब्वियसली। तो इसीलिए देखा जाए तो वुमन इसीलिए एम्पावर्ड नहीं था। वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी 2001 करके जो हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक पॉलिसी इनिशिएटिव लिया है, तो उसमें उस पेपर में से ही अभी सब गवर्नमेंट का हर स्कीम्स एम्पावरमेंट को लेकर ही प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो फैसला करने का हक जो है नहीं मिला वुमेन को। अभी जो उस एम्पावरमेंट को, उस पावर को ड्राइव करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना जरूरी है। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे किया जाए? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट औरतों को ट्रेनिंग दे करके आपका किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, कहां से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कहा जाए तो औरतों का हाथ में कमाई प्रॉपर्टी राइट्स होना है वुमेन का अपना नाम पर कुछ प्रॉपर्टी हो, तभी तो बैंक में भी आप मोर्टगेज करके लोन लेकर कुछ कर पाएगा ना। तो पहले वुमेन का नाम पर प्रॉपर्टी राइट होना है, देन आपका वुमेन इतना पोटेंशियल, इतना कैपेबल हो जाना है कि वो कुछ काम कर सके और पैसा अपना कमाई कर सके, और उसी कमाई का ऊपर वो पूरी तरह से उसका हक होना चाहिए। और वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ही आदमी को एक ताकत देता है, पावर देता है, वो आगे और चॉइस कर सके लाइफ को ना। आगे और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी एक्चुअली बाकी सारा एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, आपका सोसाइटी में आप पार्टिसिपेट करने का, अपना ओपिनियंस देने का, वो पावर भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ही देता है। आपका हाथ में पैसा होगा, आप कमाने का कुछ पावर है, कैपेबल है, तब जाके आप कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने का, बोलने का शक्ति भी रहता है, और आप पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करने का ये रहता है। तो इसीलिए अभी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो अभी प्रोग्राम चलाता है, बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप वही है, आपको किस तरह से बात करना है, लोगों के साथ मिलकर कैसे बिजनेस करना है, छोटा छोटा अभी

0: से औरतों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देता है,
1: हाँ
0: मशरूम का, अचार का और हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स, ताकि वो एक अकेला नहीं सकता है, एक औरत नहीं सकता है, ताकि वो ग्रुप में मिलकर एक दूसरा से सॉलिडरिटी में, एक दूसरा से एक स्ट्रेंथ मिले और वो सब मिलकर के कुछ ऐसा बिजनेस करे कि वहां से कुछ कमाई लाए और वही कमाई उसको ताकत दे।
1: हाँ और जैसे मैम सेल्फ हेल्प ग्रुप के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं खुद को एम्पावर्ड रखने के लिए?
0: तो मैं तो ये कहूंगी, एक तो आपका ब्रॉटअप बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको जिस तरह से आपको पेरेंट्स जिस तरह से आपको एम्पावर मतलब ब्रॉटअप किया है कि उसको कि लड़का लड़की में फर्क, और या फिर लड़की ये कर सकती वो कर सकते हैं ना, और हमारा ट्राइबल सोसाइटी में तो क्या है, आई थिंक हम लोग सभी लोग इम्पावर्ड ब्रॉटअप हुआ ही है, हमको ऐसा लगता है कि हमको हम लोगों को छोटा सी सींचा जाता है कि ये पानी लाओ, ये लकड़ी लाओ, ये काम करो, वो घर संभालो, वो करो, ये करो, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसमें देखूंगी कि इसमें वुमेन को एम्पावर्ड करने के लिए मेन का बहुत हाथ होना चाहिए, मेन का बहुत बड़ा रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एम्पावर्ड लेडी को बेसिकली मेन लोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ना, ये औरत तो ज्यादा ही मतलब खुद हर चीज हर फैसला कर सक रहा है, मेरा बात नहीं सुनता है। अगर वो लड़का लड़की बच्चा को जिस तरह से ब्रॉटअप करते समय में लड़का को कहा जाएगा कि यू आर ऑलवेज ऑथोराइज टू यू नो रूल ओवर द वोमेन, आपको अगर बोलेगा कि आपको आप सुपीरियर है और हमेशा आप ही राजा बनोगे और आप ही हुक्म चलाना है, अगर उसको इस तरह से लड़का बच्चा को ब्रॉटअप किया जाएगा तो वो तो कहीं मतलब शादी करने का बात भी हो या अपनी बहने का बात, अपने माँ के अपने सभी का ऊपर तो वो ही करेगा ना। तो इसलिए ब्रॉटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको नहीं औरतों को रिस्पेक्ट करने का अगर उसको ब्रॉटअप किया जाएगा कि नहीं औरतों का रिस्पेक्ट करना है, इज्जत देना है, औरतों का बात सुनना है, तब जाके वो बड़ा होकर के वो अपना बीवी का अपना सिस्टर्स का ओपिनियन को सुनेगा और उसका उसको इज्जत देगा। तो इसलिए ब्रॉटअप मेल का मेल फीमेल का ब्रॉटअप किस तरह से हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। वोमेन को तो ऑलरेडी इतना स्ट्रांग से ब्रॉटअप किया जाता है, लेकिन मेल का थोड़ा ब्रॉटअप में आई थिंक चेंजेस लाना चाहिए, मुझे ऐसा हमारा सोसाइटी में ये लगता है, क्योंकि वोमेन को एम्पावर करने के लिए मेन का ही ज्यादा सहयोग चाहिए।
1: सपोर्ट
0: हाँ,
1: जरूरी
0: सपोर्ट
1: है।
0: जरूरी है।
1: तो अगर हमारे जो साथी है आप लोगों कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटेड, कुछ भी बात मैडम से जाननी हो या अपनी कुछ बातें शेयर करनी हो तो प्लीज आप कर सकती है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तरफ से मैं ये कहना चाहूंगी कि आज ये सोसाइटी को, ये प्रेजेंट कंडीशन को देखने से हमारा औरतों को बहुत ही माने मॉरल लाइफ में बहुत ही डोमिनेंट है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि माने औरत जो घर का हर एक चीज को संभालना है, परिवार को संभालना है और बच्चों को जो घर का जो ये है उसको पूरा देखभाल कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा है कि औरत मर्द जो हमारा जो हस्बैंड जो ऐसा होता है कि अपना औरत बीवी को रहने दे के लोग दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों को लाइन मार के चलता है, दूसरों को ऐसा होके उस दिशा में मैं देखने से हमारा परिवार बहुत ही टूट रहा है। तो हमारा औरत जो उसमें बहुत लोग सुसाइड हो गया, सुसाइड कर चुका है, तो मैं मैम को मैं ये पूछना है कि उस दिशा में आप हमारा औरत को कैसे मजबूत रहना है उसको आपका तरफ से थोड़ा संदेश भेजने से बहुत ही अच्छा होगा, और कैसे उस सिचुएशन में कैसे हम लोग स्ट्रांग रहना है, और उसका साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि सेल्फ हेल्प का द्वारा से आजकल देखने से औरत लोग अपना अपना लेवल में अभी आगे जा रहा है और कैसा एक दूसरे को साथ देना है उस हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप से बहुत ही मैंने अभी देखने से औरत लोग आगे जा रहा है उसको तो मैं बहुत अप्रिशिएट है और देख के बहुत ही अच्छा लगा है। पर हम लोग का ऐसा होता है कि सोसाइटी में बस्ती में जो हमारा बस्ती में एग्जाम्पल देखने से औरत के लिए क्या क्या गवर्नमेंट से आता है उसको तो मुझे इतना पता नहीं है, सिर्फ हमको सेल्फ हेल्प ग्रुप ही मालूम है और एक है नरेगा बोल के, एक गवर्नमेंट से ऐसा एक आता है नरेगा, तो

0: उसको सुना है ये दोनों को ना, लेकिन दूसरा मैं नहीं सुना है। और क्या क्या स्कीम आता है उसको भी आप थोड़ा सा बता देने से ठीक है। और कुछ कुछ क्या गवर्नमेंट से कुछ प्रिविलेज हमारा बस्ती के लिए ना, औरत के लिए देता है, उसको भी थोड़ा सा बताने से ठीक है। धन्यवाद जी।
1: थैंक यू योलोम सिस्टर, अच्छा लगा आप लोग का बात सुन के। सबसे पहले तो आप जो बोला था कि हमारा जो आज आज आज का जो स्थिति में हमारा जो जिस तरह से हो रहा है ट्रेंड्स, जो हस्बैंड वाइफ का जो टूटना, देन लोग सुसाइड तक वो करना, हाँ हर एक इंसान का एक वीक मोमेंट, और हर एक इंसान इमोशनल है अपना, ये बहुत अच्छा से जानती है कि आत्मा का लाइफ होता है एक, हम लोग फिजिकल एक वो होता है, तो ये जो बात है तो वो तो बहुत सोल कनेक्टेड हो जाता है जब हस्बैंड वाइफ टूटना ये हो जाता है। ये तो बहुत ही उससे आई थिंक बड़ा दुख तो शायद दुनिया में शायद ही होगा। तो उस स्थिति में कैसे ये करना है, उभरना है, स्ट्रांग रहना है, मेरा तरफ से तो मैसेज, आप तो स्पिरिचुअल लीडर है, आप ज्यादा उस आपका ज्यादा प्रेयर सपोर्ट का ज्यादा जरूरत होगा जो भी कोई इस औरत इस स्थिति से गुजर रहा है। तो मेरा तरफ से तो यही बोलेगा कि औरत लोग अभी जैसे मैंने बोला इकोनॉमिक इम्पावरमेंट, अपना जैसे जो कमाई दमाई है वो आप लोग करने का कोशिश करना चाहिए। अपना बेटी को भी इस तरह से ब्रॉट अप करना चाहिए कि वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आपका जीवन साथी आपको एनी टाइम कोई भी मोड़ पर छोड़ देगा, आपको सहारा देने वाला आपका खुद का कैपेसिटी जो है, आपका खुद का जो कमाई है वही आपको सहारा देगा। अगर आपका पास पैसा है, आपका सेविंग्स है, तो आप सर्वाइव कर पाएगा ना। तो इसीलिए इकोनॉमिक इम्पावरमेंट होना बहुत ही, इंडिपेंडेंट होना बहुत हर औरत के लिए, हर बेटी के लिए जरूरत है। और शाम तो यही बोलती हूँ कि शादी करो नहीं करो, पहले अपना पाँव पे खड़ा हो। हमें अभी का जो ट्रेंड्स को देखते हुए यही बोलती कि शादी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट शादी से ज्यादा आपका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होना, अपने पाँव पे खड़ा रहना ज्यादा जरूरत हो गया अभी का जो ट्रेंड्स को देखते हुए। तो मैं सिस्टर लोगों को यही बोलूंगी कि ह्यूमन इमोशंस जो है अप एंड डाउन होता है, और हर एक ह्यूमन का एक फ्लो होता है, कभी अप कभी डाउन, और कभी किसी का साथ भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारा सोसाइटी जो है बहुत ही वल्नरेबल है, वीक है, तो मैं इसलिए सिस्टर लोगों को यही बोलेगा कि स्ट्रांग रखें, और सुसाइडल जो है वो जो बहुत ही रॉन्ग डिसीशन है, बहुत रॉन्ग फैसला है। और मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ा है, ये 2x2 करके, उसमें एक बहुत एक सुंदर लाइन है उसमें, समटाइम एंड इज द बिगिनिंग ना, आपका जो एंड ही शुरुआत हो सकता है। तो जरूरी नहीं आपका ये रिलेशन खत्म हो गया तो आपका लाइफ खत्म है, ये बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी चीजें अच्छा के लिए भी हो जाता है, वो शायद वो एंडिंग होना अच्छा ही था, और उससे वो एंडिंग होने के बाद आपका लाइफ उल्टा बेहतर भी हो सकता है।
0: हो सकता है,
1: हाँ, आप अकेला हो या फिर किसी और के साथ हो, बेहतर भी हो सकता है। तो इसीलिए हमको ये, मेरा ये हस्बैंड छोड़ दिया है और मेरा इसमें खत्म, ये बहुत ही गलत गलत सोच है। मैं रिपीटेडली बोलूंगी, गलत सोच है। समटाइम एंड इज द बिगिनिंग, ऑलवेज रिमेम्बर दैट, वो आपका एंड ही शुरुआत, नया और खूबसूरत कहानी का शुरुआत हो सकता है।
2: तो मैम, उन्होंने मैम ने पूछा था कि और औरत के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दूसरा स्कीम
1: ये वाला कुछ है तो। हाँ, स्कीम्स तो देखिए वो थर्ड डिपार्टमेंट का वो बहुत सारा मिनिस्ट्री, जैसे हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ही कई स्कीम्स है वुमेन के लिए ना। तो जैसे कि आपका हमारा डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए है, वन स्टॉप सेंटर जो डिस्ट्रेस वुमेन के लिए ना, वो सब है, चलाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में उन लोग का सेंटर है, जो औरत इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस से ये सब से पीड़ित होके जो उन लोग को सहारा मिलता है, तो वो सब उन लोग चलाते हैं, हेल्पलाइन चलाता है उन लोग, देन उसका स्किल ट्रेनिंग के लिए उन लोग ये करता है, प्रोग्राम है उसका उन लोगों का। मेन ज्यादातर जो स्कीम्स है स्किल बिल्डिंग के लिए, औरत किस तरह से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो सके, ट्रेनिंग में ही मैंने ज्यादातर देखा है। फाइनेंशियल बेनिफिट बोलेगा तो आपको ट्रेनिंग देने के बाद आपको लोन मिलेगा, ऐसे ही फाइनेंशियल ग्रांट्स तो देने वाला मैंने स्कीम तो नहीं देखा है। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ ग्रांट्स है उन लोगों को छोटा

0: छोटा ग्रुप को जैसे रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है या फिर उन लोग को लोन सब्सिडी में दिया जाता है, तो इस तरह से उन लोग का कुछ मतलब ये है। और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जैसे इंटरेस्ट कम करके कोई कोई बैंक्स लोग लोन देता है, जैसे हम ये नेटपी है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल के, यहाँ पे गुवाहाटी में उन लोग का वो है, यहाँ पे ब्रांच ईटानगर में। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए उन लोग कम परसेंटेज में,
1: अपना जो कुछ बिजनेस वगैरह
0: हाँ
1: शुरू करना
0: बिजनेस वुमेन
1: चाहता
0: लोग
1: है।
0: अपना, और वो भी आई थिंक मेरा नॉलेज का हिसाब से जहाँ 5 लाख तक बिना गिरवी का
1: ले
0: वो
1: सकते
0: लोन
1: हैं।
0: ले करके बिजनेस शुरू कर
1: हाँ
0: सकते हैं, ऐसे ऐसे करके वुमेन्स के लिए वेस्ट स्कीम बोल के है नेटवी में। और तो ज्यादातर इस तरह का ही बेनिफिट डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर में, जैसे वो भी स्किल बिल्डिंग ही मैंने देखा है, खेती बाड़ी जैसे कैसे करना है, अभी न्यूट्रिशन गार्डन, ज्यादातर ट्रेनिंग स्किल बिल्डिंग ज्यादा स्कीम मैंने देखा है, जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो सब ना। तो फाइनेंशियल ग्रांट्स बहुत ह्यूज नहीं है, कुछ प्रिफरेंस है अभी जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट होगा कि होम स्टे का, तो कुछ वुमेन को लेकर के कुछ प्रिफरेंस होगा, लेकिन पूरी तरह से ऐसा ही है नहीं है,
1: सीधा ऐसे पैसा मदद तो नहीं देगा,
0: नहीं देगा।
1: आपको कुछ सिखाएगा,
0: हाँ
1: उसको
0: कुछ
1: सीख
0: सिखाएगा,
1: के।
0: कुछ परसेंटेज
1: हाँ
0: इंटरेस्ट में कम होगा और कुछ अमाउंट जो है ऐसे सब्सिडी का रूप में, अगर आप बिजनेस करोगे तो इतना पैसा जो है आपको ग्रांट्स में दिया जाएगा, ऐसा ऐसा होम स्टे का जैसे टूरिज्म
1: हाँ
0: में मैंने देखा एक दो। तो मैं तो SIRD PR में हूँ, हम लोग पंचायत का और रूरल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा जो डेस्टिट्यूट वुमन है जो घर नहीं बना सकता है उन लोगों को प्रेफरेंस देना है, वो तो ग्रांट्स है, 1,30,000 का घर बनाने का असिस्टेंस देता है,
1: हाँ
0: वो तो ग्रांट्स पूरी तरह से। तो उसको वुमेन लोग को डेस्टिट्यूट को मतलब प्रेफरेंस देना है, लेकिन उसका सिलेक्शन पूरा ब्लॉक ऑफिस में होता है, वो सर्वे करके डेटा का हिसाब से। देन MG नरेगा में तो हमारा इक्वल वेजेस है ही है, उसमें मेन वुमेन का वो नहीं है। पहले तो ऐसा था ना, मेन का वेजेस ज्यादा था, वुमेन का कम था, लेकिन
1: हाँ
0: MG एनरेगा में वेजेस इक्वल देता है। तो ये दो स्कीम्स हमारा RD का, और पंचायत में तो रिजर्वेशन हमारा जैसे अभी दे ही रहा है, 33 रिजर्वेशन जो वुमेन लीडर्स लोग, ग्राम चेयरपर्सन में भी पूरा 33 है, और जिला परिषद में मैंने देखा है हमारा वुमेन JPMs ज्यादा है, 55%
1: ये तो अच्छी बात है।
0: हाँ
1: और किसी को कुछ?
2: धन्यवाद मैडम को। वही थोड़ी देर पहले आपने बताया था, मैंने हस्बैंड का भी साथ बहुत जरूरी है बोल के ना, तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, सपोज हस्बैंड नहीं होगा तो माने हम लोग कैसे माने खुद माने स्ट्रांग रहना पड़ेगा वो सबको। और इसके बाद हम लोग का आदि कम्युनिटी में ऐसा है कि माने आरान होता है, शोलोंग होता है ना, उसमें हम लोग को मामा लोग को ये दिया जाता है, अक्यू अपोंग बोलते हैं हम लोग, ऐसे वाइन दिया जाता है, लोकल वाइन ये सब दिया जाता है। तो अगर हम लोग का ये जो पिताजी नहीं रहेगा तो वो लोग माने धीरे धीरे देने के लिए छोड़ देते हैं, वो लोग गुजर जाने का बाद माने
1: हस्बैंड नहीं रहने से?
2: हस्बैंड नहीं रहने से, तो उसको आप बता दिए क्या ये सही है ना गलत है वो सब, माने दूसरा का घर में नहीं होता होगा, हम मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ, ऐसा हो जाता है माने हस्बैंड नहीं रहेगा तो लोग माने वो लोग का परिवार लोग आने के लिए धीरे धीरे कम हो जाते हैं, क्यों ऐसा माने होते हैं बोल के उसको आप थोड़ा
0: इसको
2: बता
0: तो
2: दीजिए।
0: मैं इसको अच्छी तरह से समझती हूँ, कहा जाए तो मैं भी वन ऑफ द ऐसे ही हूँ मैं, मुझे इसीलिए तो मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि इकोनॉमिक जो इम्पावर्ड होना बहुत जरूरी है, आप इंडिपेंडेंट हो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो ना, तो दुनिया आपको विजित करे ना करे उससे क्या मतलब है ना, और उस सोसाइटी का आपको ताल्लुक रख के फायदा ही किया है जो आपको मतलब
1: एक
0: इस तरह का
1: मतलब
0: एक
1: से
0: मतलब
1: ना।
0: से आपको ये कर रहा है क्या, आप उसको मतलब मत रखिए, जो लोग मतलब रख रहे हैं उसको रखे, जो ना रखे ना रखे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपना जो पाँव पे खड़ा होना वुमन को बहुत ज्यादा जरूरी है, आप क्योंकि सोसाइटी आपको फीड नहीं करेगा ना, आपको हमारा ह्यूमन सिस्टम, हम लोग का जो सर्वाइवल जो सिस्टम ऐसा है कि हमको अपना खाना खुद तलाशना है, अगर आप इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट है तो आपको वो पीड़ा सहने का समय नहीं, क्योंकि यू विल बी सो मच बिजी ना, आप बिजी होगा आपका काम काज में, वो सब केयर करने का आपको समय भी नहीं मिले।

0: रही थी, तो अगर मैं गलत नहीं समझी तो जो लोग आपको किसी मतलब से आपके साथ रिश्ते में थे उनके ना होने का आपको दुख भी नहीं होना है,
1: नहीं होना
0: ऐसे
1: चाहिए, मैं
0: रिलेशन
1: वही
0: के
1: बोल
0: लिए
1: रही हूँ।
0: आपको दुखी नहीं होना है जो
1: हाँ
0: आपको किसी मतलब से रिश्ता में था ना। अभी आपके पास आपके हस्बैंड नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे कुछ मिलना भी तो नहीं है उन्हें, तो अगर आपसे कुछ मिलना होता तो शायद होता। तो ऐसे मतलबी रिश्तों के लिए आपको खुद को दुखी नहीं करना है, बल्कि आपको आगे
1: स्ट्रांग
0: बढ़ते
1: रहना है,
0: जाना
1: आगे
0: है।
1: बढ़ना है।
2: क्लियर करना था कि जैसे कि अभी तो स्कीम तो मिलेगा, लेकिन कुछ कमा के तो लोन को तो वापस देना होता है तो ना, परसेंटेज का हिसाब से। तो ऐसे ओके, जो एजुकेटेड ये है, जब जॉब लेस है, उस लोग ऐसे जॉब नहीं मिलके ऐसे बैठ रहे, उसका डॉक्यूमेंट्स को मजबूरी में तो गवर्नमेंट को दे सकता है क्या? वही पूछने, कुछ मिलेगा क्या उसमें?
1: लोन को लेने से तो आपको रिटर्न तो करना पड़ेगा, कोई
2: हाँ
1: भी बैंक से, कहीं से भी हो, चाहे वो इंसान से हो, बैंक से हो, लोन जब वर्ड आता है तो आपको
2: डॉक्यूमेंट्स
1: तो पैसा को रिटर्न करना ही पड़ेगा
0: को
1: उसमें तो।
0: मैं गिरवी रख के ले सकता है
1: हाँ
0: ले सकता है
1: हाँ
2: क्या
1: हाँ
2: उसको?
1: हाँ उसी को मोर्टगेज जो हम लोग बोलते हैं ना।
2: मॉर्गेज ना,
1: हाँ हाँ
2: तो उसका ये डॉक्यूमेंट्स को मॉर्गेज देगा, उसका बाद उसका ये जब रुपया मिलेगा ना उसे मिलने

0: से वो हमको मिलेगा ना। अदरवाइज मेरा हम अगर लोन नहीं चुका पाया तो वो मेरा LIC का बेनिफिट हम नहीं अवेल कर पाएगा। और आप लोन डॉक्यूमेंट लेको ऐसे नहीं, आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। आप क्या करना चाहती है, आप क्या करना चाहती है, आपको बिजनेस, इसीलिए तो हमें बोला कि अभी ट्रेनिंग हर जगह, ट्रेनिंग को हर मतलब बहुत इम्फेसिस किया जा रहा है ना, हर डिपार्टमेंट हर मिनिस्ट्री, आप मशरूम का ट्रेनिंग, पिकल मेकिंग का ट्रेनिंग, आप मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा मतलब ट्रेनिंग, सॉफ्ट ट्रेनिंग, आप कैसे बिजनेस का आइडिया को निकालना है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में डिस्कशन करता है क्या क्या कर सकते हैं हम लोग ना, और क्या हैंडीक्राफ्ट, आप क्या, आप में क्या टैलेंट है आप जो उसको आगे बिजनेस का रूप में ले जा सके ना, तो वो आप एक एक प्रोजेक्ट आपको डिसाइड करना, ये मैं कर सकूंगी और मैं ये करूंगी। और मैं तो ये बोलूंगी कि आप लोन लेने से पहले हजार बार सोचना है कि मैं ये बिजनेस कर सकूंगी और मैं करूंगी विथ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, विथ स्ट्रांग आइडिया कि आपको वो लोन लेने का वेंचरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोन लेगा, आप इंटरेस्ट उतरा है, चुका नहीं पाएगा, आप डूब जाओगे, तो और ज्यादा टेंशन ना,
1: तो इस तरह देने नहीं सकेगा तो
0: हाँ, तो देने तो सकना पड़ेगा, देने नहीं सकेगा तो उसका तो बैंक ही कुछ ये होगा, देने तो सकना पड़ेगा।
1: इतना ये
0: नहीं, इसीलिए लोन लेने से पहले मैं इसलिए बोला, लोन लेने से पहले हजार बार आपको सोचना है कि मैं ये मशरूम बिजनेस मुझे जैसे भी करना है, पहले तो आप उसको छोटा अपना खुद का पैसा से थोड़ा मोरा मशरूम जैसे घर का किचन का पीछे में एक्सपेरिमेंट कर लेना है कि मैं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, ओ मैं हो रहा है यस हम करेगा इसको, तब लार्ज स्केल में करेगा तब लोन लेना है।
2: एक थोड़ा रिसर्च भी हमें कर लेना हाँ, चाहिए इसमें फायदा कितना है,
0: हाँ,
2: महीना में हमको कितना मिलेगा, हम इतना साल में मेरा इतना लोन वापस चुकाने लायक का कमा पाएगा कि नहीं, ये सब बाजार वगैरह भी थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे ख्याल,
0: इसका किलो कितना है
2: हाँ,
0: और हर महीना अगर हम कितना किलो प्रोड्यूस करेगा, कितना सेल होगा, मेरा कितना प्रॉफिट होगा, और बैंक का इंटरेस्ट कितना हमको चुकाना पड़ेगा, वो उसका पूरा हिसाब किताब करने का बाद लोन लेना है।
2: मेन तो लेकिन जितना भी आज मैडम ने भी बताया, मेन ये है कि हमको पहले तो अपने बलबूते पे खड़ा होने के लिए अपनी कुछ कमाई कर लेनी चाहिए, छोटा बड़ा कुछ भी अमाउंट हो, लेकिन खुद की कमाई बहुत जरूरी है, तब जाके हम थोड़ा कुछ बोल सकते हैं, कुछ सोच भी सकते हैं, हिम्मत कुछ मिल सकते हैं कि अपनी एक कमाई होने से। तो मैडम अभी बता रही थी कि हम लोग का जिला स्तर पे 55% औरत ने डोमिनेट करके रखा है, तो ये अच्छी बात है। तो फिर भी मैं यहाँ पे मैम जानना चाहती हूँ कि जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का पॉलिटिक्स में ओवरऑल, जैसे कि आपके जो भी एक्सपीरियंस के या आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से कैसे है हमारी स्थिति?
0: हाँ, मैं ये तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी, मैं सोचकर भी आई थी इस चीज को मैं बोलूंगी करके
2: जी।
0: अभी जो मैं बोलूंगी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप,
2: बिल्कुल
0: क्वालिटी ऑफ लीडरशिप में इम्प्रूवमेंट का बहुत जरूरत है,
2: बिल्कुल।
0: जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ वोमेन का जो लीडर लोगों को, मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेन करके, मेरा ट्रेनिंग का जो वर्क है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का ट्रेनिंग से शुरू किया था, उन लोगों को तब देखना स्टार्ट किया है। अभी तो बहुत चेंजेस हुआ है, अभी बहुत औरत लोग का जो स्टेटस है जो एक पहले जैसे था उससे जो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, कॉन्फिडेंट लेवल बहुत राइज हुआ है, इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, और लेवल ऑफ जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो भी बहुत इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और लेकिन अभी भी बहुत इंक्रीज होना और इम्प्रूवमेंट होने का बहुत जरूरत है। और क्यों बोलने से, जैसे अभी हमारा पंचायत का लीडर लोग है, जैसे पंचायत मीटिंग में या कोई भी लीडर बनने का बाद भी उन लोग जितना मैन लोग कॉन्फिडेंटली मीटिंग में बात कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और मैं वुमन लीडर में ये नहीं देख पा रहा है। जितना कॉन्फिडेंस से, जितना मतलब एक इन्फ्लुएंस करता है मैन लोग ना, उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, कर पा रहा है। कोई एक्सेप्शनल लीडर होगा, वुमन, हम लोग का वुमन लीडर भी है, कर पा रही है, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स जो अभी तक जैसे ग्राम चेयरपर्सन लोग है ना, और जिला परिषद मेंबर्स लोग, उन लोग इतना इन्फ्लुएंसिंग नहीं हो पा रहा है, तो इसी वजह से हमारा क्वालिटी ऑफ लीडरशिप जो है थोड़ा

0: डाउन है, लेकिन और हम लोगों को इसमें काम करना जरूरत है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल रेज करना है। और मेन थिंग, कॉन्फिडेंस किस चीज से मिलता है? कॉन्फिडेंस मिलता है, अभी जैसे मैं बोला, इकोनॉमिक तो एक है ही है,
1: हाँ
0: पैसा अपना हाथ में हो, इनकम अपना अपना बलबूते पे अगर खड़ा है तो वो एक कॉन्फिडेंस तो देता ही है। और दूसरा कॉन्फिडेंस जो देता है वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान। अगर आप इन्फॉर्म्ड सिटीजन, इन्फॉर्म्ड है, आपका पास पूरा नॉलेज है, तो आप बात करने का पूरा कॉन्फिडेंट आपका पास आ जाता है। आप इन्फॉर्म नहीं है, नॉलेज नहीं है आपका पास, तो आप तो हमेशा एक डरा डरा, ओ ऐसा भी होता होगा, वैसा भी होता होगा, एक आपका पास कॉन्फिडेंट नहीं होगा, हम तो गलत ही होगा होगा, हम बोलने से भी हमको गलत सोचेगा। तो इसीलिए मैं हमारा लेडीज से, हमारा लीडर लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग, इसलिए हम लोग ट्रेनिंग में, मैं इसीलिए हम लोग बहुत, मैं सिंसियरली देने का ट्राई करती हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखने के लिए, जानने के लिए कोशिश कीजिए। देखो, दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन तो है नहीं, कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और कोशिश करके तो लीडर भी बन गया, अभी सब कुछ हो गया ना, लेकिन थोड़ा सा और कोशिश की, पूरा इन्फॉर्मेशन को, जैसे एमजी नरेगा क्या है पूरी तरह से जानने का कोशिश, पीएमएवाई क्या है, और भी ऐसा ऐसा बहुत इन्फॉर्मेशन है कि इतना, मतलब इन्फॉर्मेशन तो ओशन है, तो वो ओशन में माने घुसने का ट्राई करें, और उससे कॉन्फिडेंस लेवल रेज होगा, अवेयरनेस लेवल रेज होगा। 100% श्योरिटी का साथ अगर आप मीटिंग में कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, नहीं इसको ऐसा ही करना है ना, ऐसे मतलब हो सकना है, ये मैं बोलूंगी। और ये हमारा जिला परिषद या ग्राम पंचायत मेंबर्स लोगों के लिए सिर्फ नहीं है, हर एक औरत को
1: हाँ
0: ये जरूरत है। एक इन्फॉर्म सिटीजन ही एक कॉन्फिडेंस लेवल को रेज करता है। तो नॉलेज हासिल करने का हमेशा कोशिश करें, और समय को हमेशा यूटिलाइज करें।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम। तो हम भी यही आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो नंबर्स है ये क्वालिटी के साथ और बढ़े ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को कार्यक्रम पसंद आए होंगे, और यहीं पे हम जो आज का ये जो कार्यक्रम है इसको हम यहीं पे बांधना चाहेंगे। तो अपने सुनने वालों को भी बता दूं कि आज हम महिला जगत कार्यक्रम में बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। और हमारे बीच जैसे शुरू में बताया कि यहाँ पे 6 जन हैं जो अलग अलग सेक्टर से हमारे साथ जुड़ी थी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला सशक्तिकरण पर आज हमारे बीच हमें ज्ञान दे रही थी, हमें जानकारियां दे रही थी और हमें सशक्त कर रही थी हमारे डॉक्टर लिखा किरण मैम, सीनियर फैकल्टी कम डेप्यूटी डायरेक्टर SIRD एंड पंचायती राज अरुणाचल प्रदेश। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आकाशवाणी को अपना वक्त दिया और हमारे महिला साथियों के साथ बातचीत की, उसके लिए हम आकाशवाणी की तरफ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
0: मैं
1: करते
0: भी
1: हैं।
0: आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, थैंक यू। मुझे भी सीखने को मिला आज फिर से इन लोगों के
1: जी,
0: साथ।
1: तो हम आशा करते हैं जैसे हम खुश हैं हमारे श्रोता भी उतना ही खुश है, और जितनी जानकारियां हमने आज इस स्टूडियो के अंदर मिला हमारे श्रोता भी उतने ही मिले होंगे, और ये जानकारियां हम तक नहीं रह के ये बढ़ते ही जाएंगे। और इसी आशा के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और FM 103.1 MHz। नमस्कार।
2: जी हाँ श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे महिलाओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम। उम्मीद है इस कार्यक्रम के जरिए विशेष रूप से हमारी महिला श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होगी। तो श्रोता मित्र, इसी के साथ ही आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। फिलहाल हम ले रहे हैं अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: राइट ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मन रहा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मन, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: इंटीरियर
1: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

श्रोता मित्र, इस मजेदार गीत को आप सुन रहे थे हम तुम फिल्म से शान और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। श्रोता मित्र, चलिए आपको सुनवाते हैं अगला गीत कॉकटेल टू फिल्म से। जी हां, शिल्पा राव और आरवान की आवाजों में।

0: अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज में खूबसूरत गीत सलाम इश्क फिल्म से। श्रोता मित्र इसी के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के ठीक 8 बज रहे हैं और इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है अरुणाचल प्रदेश की विविधता को दर्शाता कार्यक्रम अपना गीत का।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz जिसमें लेकर आई हूँ आपका अपना कार्यक्रम अपना गीत। और अपना गीत कार्यक्रम के सफर में मैं हूँ आपके साथ गैर अतः। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि अपना गीत कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं अपनी मिट्टी की खुशबू, मतलब अपना अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत। जिस तरह अपने घर और गाँव से दूर अनजान जगहों पर अपनी तरह कोई दिख जाए, हमें कोई अपनी भाषा में बोले या कोई पहनावा अपना सा दिख जाए, तो जाने अनजाने उस अनजान इंसान से अपना सा रिश्ता जुड़ जाता है। और उसी तरह बॉलीवुड हॉलीवुड रैपिंग पॉपिंग और बीट बॉक्सिंग के इस जमाने में कहीं हम अपना रंग न भूल जाए, इसलिए अरुण FM 103.1 MHz आपको अपनों से जोड़ते हैं अपने राज्य के गीतों के जरिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गायक के गीत से जो है तो गालो समुदाय से, पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग भाषा में कई गीत गाए हैं और हम सबके लोकप्रिय भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री मोगे दोजी के। तो चलिए श्रोताओ, मोगे दोजी की अच्छी सेहत की कामना के साथ कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं मोगे दोजी द्वारा गाया ये गालो गीत।

अपना गीत कार्यक्रम में पेश है एक रोमांटिक गीत जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका से अपने प्यार की गहराई को बताते हैं। ये अपतनी गीत है और आवाज है हागी कोमो की।

दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा था कि कहीं इस चकाचौंध दुनिया में हम अपना रंग न खो दे, और हमारा अगला गीत इसी भाव से भरे है जिसमें समाज को अपनी संस्कृति, परंपरा और पहचान को बचाने की और उनकी अहमियत को पहचानने की गुहार लगा रहे हैं। और ये गीत है निशी भाषा में, जिसे गाया है अरुणाचल प्रदेश के लेजेंडर सिंगर्स में से एक और आकाशवाणी ईटानगर में कार्यक्रम निष्पादक के रूप में कार्यरत जेम्स बिजनू नाबाम के। तो चलिए आनंद लेते हैं इस निशी गीत को।

हमारी संस्कृति हमारी पहचान। जी हाँ श्रोताओ, हम यही कहते हैं और मानते भी हैं। तो आइए सुनते हैं अगला गीत स्वर्गीय विनायक तैसिम की आवाज में। ये तांगसा गीत है जिसमें गायक ने हमसे और आपसे यह आग्रह कर रहे हैं कि हम उनके शब्दों को या संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को बताते जाएं। आने वाली पीढ़ी के दिमाग में अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति एक प्रेम पैदा करें, उनके दिमाग में अलग अलग रूप से संस्कृति और परंपरा को संजोकर रखने का भार हमें सौंप रहे हैं।

तो दोस्तों वक्त हो चला है अपना गीत कार्यक्रम के समापन का। उम्मीद करती हूँ हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे। श्रोताओं आप अपना गीत कार्यक्रम सुन सकते हैं थर्सडे से सैटरडे रात 8 बजे यानी गुरुवार से शनिवार रात 8 बजे अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो लीजिए कार्यक्रम का अंतिम गीत तागिन भाषा में।

नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जिसमें लेकर आई हूँ आपका अपना कार्यक्रम अपना गीत। और अपना गीत कार्यक्रम के सफर में मैं हूँ आपके साथ गैर अतः। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अपना गीत कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं अपने मित्र।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज।
1: हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आकाशवाणी ईटानगर। यू आर लिसनिंग टू वेस्टर्न मेलोडीज एंड आई एम योर होस्ट कोको। टुडेज प्लेलिस्ट इज पैक्ड विद अनफॉरगेटेबल पॉप हिट्स फिल्ड विद लव, हार्ट ब्रेक, कॉन्फिडेंस, मेमोरीज एंड पावरफुल इमोशंस। फ्रॉम क्लासिक फेवरेट्स टू एनर्जेटिक पार्टी सॉन्ग्स, वी गॉट एवरीथिंग फॉर एवरी मूड। सो रिलैक्स, टर्न अप द वॉल्यूम एंड एंजॉय द म्यूजिक विद अस। This next song is a true pop classic, As Long As You Love Me by Backstreet Boys talks about unconditional love and accepting someone.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपको बता दें कि इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का, गुजरे जमाने के अनमोल गीतों का खजाना। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत, गजल का नाज है तू, नज्म का शबाब है तू, यकीन कर मुझे मेरी ही शायरी की कसम। जी हाँ श्रोता मित्र, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत गजल फिल्म से। धुन दिया है मदन मोहन ने, साहिर लुधियानवी के लिखे बोल, और प्रस्तुत है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में।

जी हाँ श्रोता मित्रों, इस बेहतरीन नगमे का आप आनंद ले रहे थे गजल फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़ में। जी हाँ श्रोता मित्रों, चलिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं चोरी चोरी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

सावन और प्यार के मौसम में रूठने मनाने की खूबसूरत दास्तां को बयां करता ये प्यारा गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में 16वां साल फिल्म से। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz पर भूले बिसरे गीत। आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: सत्संगी
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

तीन देवियां फिल्म से ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोता मित्र लीजिए प्रस्तुत है इसी फिल्म से अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में और कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

तीन देवियाँ फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये बेहतरीन नगमा। श्रोता मित्रों, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के इस आखिरी गाने के साथ अब हम इस तीसरे प्रसारण सभा की समाप्ति पर आ पहुंचे हैं और आप सभी से विदा लेने का वक्त भी हो चला है। इस प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने में आज हमारे साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादिका गैर एते तथा तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा, साथ ही हमारे अन्य सहकर्मी। श्रोता मित्रों, आगे कुछ ही पलों में यानी 9:30 होते ही आप जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड के साथ, तो आप बने रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपसे होगी फिर मुलाकात कल प्रातः 5:48 पर यानी हमारी पहली प्रसारण सभा के तहत। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति, आप रखें अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: world, wishing everyone a very happy Independence Day. Jai Hind.
1: And now we have an Indo-Chinese couple that lives in Singapore and have this to say.
2: My name is Shamik. I'm from Calcutta. My wife is Chinese.
3: Stella.
2: My kid is a mixed kid.
4: Indo-Chini bye bye.
3: Indo-Chini bye bye. Is it?
4: Yeah,
2: so we celebrate both countries.
3: We stay in Singapore.
2: We are here, all Indians, with a great spirit. We are going to support our nation, and I'm 100% sure we're going to make our nation proud.
4: Jai Hind.
5: The Indians world over have given their best to the nation of their profession and have contributed immensely to the growth of that particular nation.
1: On the Independence Day, the vibrant spirit of India resonates far beyond its geographical borders, pulsing through the hearts of millions of Indians scattered across every nook and corner of the globe.
5: From the bustling tech hubs of the Silicon Valley to the historic streets of Europe and the sands of the Middle East, the global Indian diaspora stands as a living testament to the nation's enduring legacy.
1: Distance only deepens their devotion as the tricolor hovers proudly in foreign skies. It reflects the deep-rooted love, resilience and unity that binds every overseas Indian to their motherland.
5: The India's truest cultural ambassadors, seamlessly blending into new societies while fiercely preserving the sacred soil of their heritage in their souls.
1: No matter which part of the globe we Indians live in,
5: no matter what our age is, their collective voices join the symphony of a billion plus back home.
1: No matter where an Indian resides,
5: their heartbeat,
1: the heart of millions of overseas Indians,
5: will always echo the sacred rhythm of Jai Hind.
6: In the National Program features, you just heard the feature Echoes of Independence with Indians Around the Globe. Narration, Vaibhav Jyotsna Srivastav and Vidushi Watts. Script and production, Nitish Arora. A production of Akashvani Delhi for Central English Features Unit. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani. Please stay tuned in for our next broadcast that follows shortly.
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
8: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
9: जय।
8: भारत माता की
9: जय।
8: भारत माता की
9: जय।
7: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंधु

0: ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। जेपीएससी प्रारंभ परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. Sharing a video message, Mr. Modi said that those who participate in sports will prosper in life and urge citizens to always cheer for Bharat.
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: India finished at the fourth spot on the medal table at the Games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July and the 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.

0: In a social media post, Mr. Modi said, "Tricolor is the pride of the nation and a constant source of inspiration to always give the best for the country." The Prime Minister expressed happiness, saying that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram as it marks its 150th anniversary. Vice President C.P. Radhakrishnan today hoisted the national flag at the flag point in Sri Vijayapuram, the capital of the Andaman and Nicobar Islands, as part of the Har Ghar Tiranga campaign. On the occasion, he paid tribute to the brave freedom fighters. The Vice President also attended the state function Tiranga Concert on Vande Mataram, held at the auditorium of Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology. Raksha Mantri Rajnath Singh today said that Operation Sindoor sent a global message that India will go to any extent to ensure the safety of its citizens while protecting the Sindoor worn by the women of this country. The minister said this at the inaugural event of the Sindoor Maharaktadan Yatra blood donation camp at Base Hospital in New Delhi. The defense minister commended the Indian Defense Forces for eliminating terrorists and their handlers based in Pakistan and ensuring that those who dared to cast an evil eye on India faced their dire consequences. The Jharkhand government has reached an agreement on most of the demands of the students protesting against alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations. State Minister Sudibya Kumar Sonu said the government has agreed to cancel the 14th JPSC preliminary examination and the 2023-25 backlog examinations. The minister stated this while talking to media following talks between the state government and protesting students today. The Ministry of Housing and Urban Affairs has said that over 1 crore and 25 lakh houses have been sanctioned so far under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban PMAYU and PMAYU 2.0. Of these, more than 1 crore houses have been completed and handed over to beneficiaries across the country, with around 1 crore of the houses allotted to women. During the Central Sanctioning and Monitoring Committee meeting chaired by the Housing and Urban Affairs Secretary Satyendra Singh, over 2,09,000 houses were sanctioned under the PMAYU 2.0 for economically weaker section families in 16 states and union territories. Indian weightlifter Maharajan Arumuga Pandian clinched the silver medal in the men's 65 kg category at the Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan today. Maharajan produced a new personal best total of 285 kilograms, lifting 128 kg in the snatch and 157 kg in the clean and jerk to secure the silver. Vietnam's Hong Thach claimed the gold medal with a total lift of 291 kilograms, finishing 6 kilograms ahead of Maharajan. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार मुख्य समाचार ईरान ने कहा अमेरिका के साथ अभी सीधी बातचीत नहीं हो रही है केवल मध्यस्थों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है रूस और यूक्रेन ने रात भर एक दूसरे पर कई हमले किए कई नागरिकों की मौत और कई घायल इसराइल ने गजा के लिए अमेरिका की 15 सूत्री शांति योजना को खारिज किया डॉल्फिन तूफान चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा रेड अलर्ट जारी 1300 से अधिक उड़ानें रद्द 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक अपने नाम किया अब समाचार विस्तार से ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत नहीं हो रही बल्कि केवल मध्यस्थों के माध्यम से संदेश भेजे जा रहे हैं ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार श्री अराघची ने कहा है कि कई देश ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फिर शुरू करने के लिए अनुकूल स्थिति बनाने के प्रयास कर रहे हैं उन्होंने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका जून में दोनों पक्षों के बीच सहमति बने 14 बिंदुओं का पालन नहीं करता तब तक ईरान अमेरिका के साथ दोबारा बातचीत नहीं करेगा श्री अराघची ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से यातायात प्रबंधन के लिए एक कानूनी तंत्र पर ओमान के साथ समझौता लगभग पूरा होने वाला है हालांकि इस जलमार्ग को फिर से खोलना कुछ शर्तों के अधीन है इसमें अमेरिका द्वारा समझौते का उल्लंघन करने पर मुआवजे का भुगतान भी शामिल है रूस और यूक्रेन ने रात भर एक दूसरे पर हमले किए इन हमलों में दोनों देशों के कई नागरिकों की मौत और कई घायल होने की खबर है रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन के ड्रोन हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 20 से

0: ज्यादा घायल हो गए।
1: क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया है कि हमले में 29 अपार्टमेंट भवन और 5 निजी मकान क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन के खार्किव में साल्तिवस के जिले में एक ऊंची आवासीय इमारत को रूस की मिसाइलों ने निशाना बनाया। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह साइनी हुबूब ने बताया कि इस हमले में 2 लोग मारे गए और 13 घायल हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार काला सागर में, ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमलों में 8 लोग घायल हो गए। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रात भर चले ड्रोन हमलों में यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में तेल डिपो तथा सैन्य आपूर्ति केंद्रों को निशाना बनाया गया है। मंत्रालय ने दावा किया कि रात भर में क्रीमिया, काला सागर और आजोव सागर के ऊपर यूक्रेन के 153 ड्रोन मार गिराए गए। विश्व दर्पण के लिए मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: दूसरी ओर यूक्रेन ने अमेरिका के साथ अपने पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली में मिसाइल इंटरसेप्टर की मासिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने बेलग्रेड में संवाददाताओं को बताया कि अमेरिका मासिक आधार पर यूक्रेन को मिसाइल इंटरसेप्टर की आपूर्ति करेगा। उन्होंने कहा कि ये देश की हवाई सुरक्षा आवश्यकताओं से अब भी कम रहेगी। राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बयान उनकी सर्बिया की पहली यात्रा के दौरान आया है। इस यात्रा का उद्देश्य आपसी सहयोग बनाना है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के लिए 15 सूत्री योजना खारिज कर दी है। आज कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास के पूरी तरह हथियार डालने तक इसराइल अपनी सेना वापस नहीं बुलाएगा। उन्होंने कहा कि इसराइल के अधिकारी आगे की कार्रवाई के बारे में अमरीका के साथ चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने पिछले महीने गाजा में हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण के उद्देश्य से एक समझौते पर सहमति जताई थी। हालांकि हमास ने कहा है कि हथियारों को सौंपने की प्रक्रिया इस शर्त पर आधारित है कि इसराइल अपनी सैन्य कार्रवाई रोके और गजा से अपनी सेना वापस बुलाए। पिछले अक्टूबर में हुए प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते के बावजूद इसराइल का गजा में हमला जारी है। रूस ने रणनीतिक समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत और हिंद महासागर तक रेल मार्ग विकसित करने की संभावना तलाशने का प्रस्ताव किया है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराद खुसरूलिन ने कहा कि वैकल्पिक रेल मार्गों से होर्मुज और बास्फोरस जल डमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों से जुड़े जोखिम कम किए जा सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते भारत तक रेल संपर्क की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रस्तावित रेल मार्ग से रूस को मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के रास्ते हिंद महासागर तक वैकल्पिक जमीनी संपर्क मिल सकता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की नीति परमाणु अप्रसार संधि NPT के दायरे में काम करने की है। नागासाकी के पीस पार्क में आयोजित स्मृति समारोह में 90 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सुबह 11:02 पर मौन रखा। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर फैट मैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया था। इस हमले में उस वर्ष के अंत तक करीब 74,000 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के बाद जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने तूफान के कारण देश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी, जबकि आसपास के क्षेत्रों में लगभग 3,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। ओरेगन के यूजीन में अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2.21 मीटर की अपनी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ कूद की बराबरी की। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसी प्रतियोगिता की पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता शाहनवाज खान को बधाई दी है। आइए सुनते हैं नवीन की रिपोर्ट।
2: बसंत

0: ने पहले 2.06 मीटर, फिर 2.12 मीटर और 2.17 मीटर की ऊंचाई पार की। इसके बाद 2.21 मीटर की शानदार जंप ने पोडियम पर उनकी जगह पक्की कर दी। टॉप तीन एथलीटों में 2.21 मीटर की ऊंचाई पार की, लेकिन काउंटबैक नियम के आधार पर बसंत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अंतर्गत अल्जीरिया के यूनिस अयाची ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि ब्रिटेन के ओटिस पूल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं शाहनवाज खान ने पुरुषों की लंबी कूद में 7.84 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद के साथ कांस्य पदक जीता। ये लंबी कूद में किसी भारतीय पुरुष का पहला विश्व स्तरीय पदक भी है। शाहनवाज ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए तीसरे राउंड में 7.84 मीटर की जबरदस्त जंप लगाई और फिर पांचवें राउंड में 7.83 मीटर की जंप के साथ दुनिया के बेहतरीन एथलीटों के बीच अपनी और पोडियम पर अपना स्थान बनाया। इटली के इंजोली ने 7.97 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मैक ग्रोडर ने 7.96 मीटर के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया।
1: इसके साथ ही भारतीयों ने 2021 की अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन, कुल 3 पदकों की बराबरी कर ली है। प्रतियोगिता खत्म होने में अभी एक दिन बाकी है और भारत के पास टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड कायम करने का सुनहरी मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक जीतकर तालिका पदक में चौथे स्थान पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ अभी सीधी बातचीत नहीं हो रही है, केवल मध्यस्थों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। रूस और यूक्रेन ने रात भर एक दूसरे पर कई हमले किए, कई नागरिकों की मौत और कई घायल। इसराइल ने गजा के लिए अमेरिका की 15 सूत्री शांति योजना को खारिज किया। डॉल्फिन तूफान चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, रेड अलर्ट जारी, 1300 से अधिक उड़ाने रद्द, 300,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता, शाहनवाज ने लंबी कूद में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashwani. I'm Abhineet Shukla with the World News. The headlines. Iran says it is not engaged in direct talks with US currently and exchanging messages only through intermediaries. Russia and Ukraine trade overnight strikes resulting in death of several civilians and injuries on both sides. Israel rejects United States 15-point peace plan for Gaza. Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, red alert issued, over 1,300 flights cancelled, 3 lakh people relocated. And at World Athletics Under-20 Championships, Basant Kumar Meghwal wins silver in high jump while Shahnawaz Khan bags bronze in long jump. And now the news in detail. Iranian Foreign Minister Sayyed Abbas Araghchi today said his country is not currently engaged in direct negotiations with the United States while messages between the two sides are being exchanged through intermediaries. According to his statement carried by Iranian state media, Mr. Araghchi said several countries were continuing efforts to create conditions for the resumption of negotiations between Tehran and Washington. He said Tehran would not return to direct talks with the US until Washington ends its violations of the 14-point Memorandum of Understanding signed between the two sides in June. Iran-backed armed group Houthi in Yemen attacked a crucial port on the Red Sea, killing 7 people, including 4 troops, while 15 civilians were also injured. Meanwhile, Houthi also claimed responsibility for a drone attack on an Aramco refinery in Saudi Arabia's Jazan. Houthi spokesperson Yahya Sari said The group targeted the oil facility in Saudi Arabia's response to alleged violations of Yemeni airspace over the provinces of Hajjah and Sada by Kingdom's drones.